प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: सुबह के 6 बजे हैं।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्षिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज रविवार 14 जून के पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। फुटबॉल विश्व कप से शुरू करते हैं। विश्व फुटबॉल कप 2026

0: हिस्सा के अंतर्गत कल रात ग्रुप बी में कातो स्विट्जरलैंड का स्को ड्रो रहा, फिर सुबह 2 बजे ब्राजील और मोरक्को आमने सामने आए, ये भी स्को ड्रो रहा। अभी फिलहाल 1 मैच चल रही है, यानी कि 5 बजे खेले गए ग्रुप सी के मैच, हाइटी स्कॉटलैंड जो है अभी खेल रहे हैं, तो फिलहाल के लिए स्कोर है हाइटी 0-1, जहां पर 28वें मिनट पर मागिन ने अपना स्कोर डाला। और बीच बीच में जो स्कोर है विश्व फुटबॉल कप के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आपको याद दिला देते हैं कि ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया तुर्की की जो मैच हैं वो सुबह 8 बजे, और ग्रुप ई में जर्मनी कुरासाओ जो है रात 9 बजे आज के लिए निर्धारित हैं। और अन्य खबरों में मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यू में एक हिंसक झड़प में एक युवक की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों की सब्सिडी व्यवस्था में सुधार को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू होगी। और उधर ईरान इजराइल संघर्ष का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। मॉरिशस में विकास दर घटने और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मॉरिशस में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों का दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों के कौशल को मजबूत करना और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। और आज विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर नियमित रक्तदान के महत्व पर भी जोर दिया जा रहा है। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी और आत्मनिर्भर समाज बनाने की मांग उठी है। संगोष्ठी में रोजगार, आत्मनिर्भरता और सोशल इंक्लूजन पर भी जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित शांति समझौता जल्द अंतिम रूप ले सकता है। मध्यस्थ देशों और दोनों पक्षों के नेताओं ने वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया है। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: मौसम का हाल, आम हालत। पूर्व से आने वाली अस्थिर बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे और वर्षा होगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर दिन के दौरान अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात के दौरान साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:42 पर और सूर्यास्त आज शाम 5:37 पर।
2: RM3 Radio.

0: ये के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो है। मौला करीम तमाम अहल ईमान को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और तमाम आफात व बलियात से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं कलिमात खैर के साथ आइए आज की उर्दू महफिल सबाह खैर की इब्तिदा हस्ब आदत तिलावत कुरान पाक की चंद आयतों से करते हैं। समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا
1: نور

नून कलम और उनके लिखे की कसम, तुम अपने रब के फन से मजनून नहीं और जरूर तुम्हारे लिए बे इंतहा सवाब है और बेशक तुम्हारी खूबू बड़ी शान की है। तो अब कोई दम जाता है कि तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में कौन मजनून था। बेशक तुम्हारा खूब जानता है जो उसकी राह से बहके और वो खूब जानता है जो राह पर है।

0: तो झुटलाने वालों की बात न सुनना, वो तो इस आरजू में है कि किसी तरह तुम नरमी करो तो वो भी नरम पड़ जाएं। और हर ऐसी की बात न सुनना जो बड़ा कस्में खाने वाला, जलील, बहुत ताने देने वाला, बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला, भलाई से बड़ा रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनहगार, दुरुस्त खू, उस सब पे तुर्रा ये कि उसकी असल में खता। इस पर के कुछ माल और बेटे रखता है, जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएं कहता है कि अगलों की कहानियां हैं, करीब है कि हम उसकी सुअर किसी थूतनी पर दाग देंगे।
1: इन

बेशक हमने उन्हें जांचा जैसा उस बाग वालों को जांचा था जब उन्होंने कसम खाई कि जरूर सुबह होते उसके खेत काट लेंगे और इंशाअल्लाह न कहा तो उस पर तेरे रब की तरफ से एक फेरी करने वाला फेरा कर गया और वो सोते थे तो सुबह रह गया जैसे फल टूटा हुआ। फिर उन्होंने सुबह होते एक दूसरे को पुकारा कि तड़के अपनी खेती को चलो अगर तुम्हें काटनी है तो चले और आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहते जाते थे कि हरगिज आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में आने न पाए।

उनमें जो सबसे गनीमत था, बोला क्या मैं तुमसे नहीं कहता था कि तस्बीह क्यों नहीं करते? बोले पाकी है माए रब को, बेशक हम जालिम थे। अब एक दूसरे की तरफ मलामत करता मुतवज्जे हुआ, बोले हाय खराबी हमारी, बेशक हम सरकश थे। उम्मीद है हमें हमारा रब इससे बेहतर बदल दे, हम अपने रब की तरफ रगबत लाते हैं। मार ऐसी होती है, और बेशक आखिरत की मार सबसे बड़ी। क्या अच्छा था अगर वो जानते।

बेशक डर वालों के लिए उनके रब के पास चैन के बाग हैं। क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों का सा कर दें? तुम्हें क्या हुआ, कैसा हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे लिए कोई किताब है उसमें पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए उसमें जो तुम पसंद करो, या तुम्हारे लिए हम पर कुछ कस्में हैं कयामत तक पहुंचती हुई कि तुम्हें मिलेगा जो कुछ दावा करते हो? तुम उनसे पूछो उनमें कौन सा उसका जामिन है या उनके पास कुछ शरीक हैं, तो अपने शरीकों को लेकर आए अगर सच्चे हैं।

0: जिस दिन एक साख खोली जाएगी जिसके मान अल्लाह ही जानता है, और सज्दे को बुलाए जाएंगे तो न कर सकेंगे, नीची निगाहें किए हुए उन पर खारी चढ़ रही होगी। और बेशक दुनिया में सज्दे के लिए बुलाए जाते थे जब तंदुरुस्त थे, तो जो इस बात को झुठलाता है उसे मुझ पर छोड़ दो, करीब है कि हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे जहां से उन्हें खबर न होगी, और मैं उन्हें ढील दूंगा, बेशक मेरी खुफिया तदबीर बहुत पक्की है। या तुम उनसे उजरत मांगते हो कि वो चट्टी के बोझ में दबे हैं, या उनके पास गैब है कि वो लिख रहे हैं।
1: फस्बिल

0: तो तुम अपने रब के हुक्म का इंतजार करो और उस मछली वाले की तरह न होना जब इस हाल में पुकारा कि उसका दिल घुट रहा था। अगर उसके रब की नेमत उसकी खबर को न पहुंच जाती तो जरूर मैदान पर फेंक दिया जाता, इल्जाम दिया हुआ। तो उसे उसके रब ने चुन लिया और अपने कुर्ब खास के सजावारों में कर लिया। और जरूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बद नजर लगाकर तुम्हें गिरा देंगे जब कुरान सुनते हैं, और कहते हैं ये जरूर अकल से दूर हैं, और वो तो नहीं मगर नसीहत सारे जहान के लिए।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। मज़ीद सामीन, अभी आपने कुरान पाक की चंद आयात मुबारका की तिलावत समाअत की। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो हमें इन आयतों के सुनने का अजर व सवाब अता करे और हमें सही तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। पेशे खिदमत है खम्द, आइए समात करते हैं।

हसद ईमान के ख़िलाफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आपस में दुश्मनी नहीं रखते, हसद नहीं करते, कीना नहीं रखते, बल्कि एक जिस्म की तरह होते हैं। एक हिस्सा तकलीफ़ में हो तो दूसरा भी बेचैन हो जाता है। इसलिए मोमिन की शान ये है कि वो भाई के लिए भलाई चाहे, न कि उसकी नियमत देखकर जलने लगे।

दो हसद जायज़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ दो शख्सों पर रश्क किया जा सकता है, एक वो जिसे अल्लाह ताला ने कुरान दिया और वो दिन रात उसकी तिलावत करता है, और दूसरा वो जिसे माल दिया और वो उसे अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है। इन दोनों के अलावा हसद ममनू है, क्योंकि हसद दिल को बीमार करता है और इंसान को गुनाह में ले जाता है।

मोहतरम सामीन, हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के दिल से सुकून छीन लेती है। जो शख्स हसद करता है वो दूसरों की नेमतों पर जलने के बजाय खुद को नुकसान पहुंचाता है। हसद इंसान के चेहरे की खुशी, दिल का इत्मीनान और जहन की पाकिजगी ख़त्म कर देता है। हसूद हमेशा परेशान रहता है क्योंकि वो दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ताला ने हर शख्स के लिए अलग अलग नसीब, अलग रिस्क और अलग मकाम लिखा है। जो चीज़ किसी के हिस्से में है वो हसद से नहीं छीनी जा सकती। लिहाजा बेहतर है कि इंसान हसद के बजाय दुआ और मेहनत को अपना हथियार बनाए। हसद इंसान को नाशुक्री, गीबत, दिल की सख्ती और कीना जैसे गुनाहों में ढकेल देता है। अगर इंसान दिल को पाक रखे तो अल्लाह ताला उसके रिज्क और बरकत में इजाफा फरमाता है। जो शख्स दूसरों की नेमतों पर खुश होता है अल्लाह ताला उसके लिए भी नेमतों के दरवाज़े खोल देता है। इसीलिए हसद के बजाय खैरख्वाही, मोहब्बत और दुआ का रास्ता अपनाएं। यही मोमिन की शान भी है और कामयाबी का रास्ता भी। सामीन मोहतरम, हम अपने प्रोग्राम सबाल खैर के आखिर में पहुंच चुके हैं। इंशाअल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए आइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति। निदुषा का करजोर प्रणाम स्वीकार करें श्रोताओं, आप सबका हार्दिक अभिवादन। ये है भक्ति में शक्ति कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर। आइए श्री गणेश करते हैं।

अक्सर यह बात हमको कही जाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ एक ऐसा दिव्य संदेश है जो मनुष्य के जीवन को शांति, संतुलन और सफलता की दिशा देता है। जब हम अपने कर्मों से

अधिक उनके परिणाम की चिंता करने लगते हैं, तब हमारा जीवन अशांत हो जाता है। हम भविष्य की फिक्र में वर्तमान के कर्तव्य को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान हमें सिखाते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। फल देना या ना देना ईश्वर के हाथ में है।

अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य अपने कार्य से अधिक उसके परिणाम को लेकर चिंतित रहता है। इसी चिंता के कारण उसका मन अशांत हो जाता है और वो तनाव का शिकार हो जाता है। लेकिन जब हम अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं और विश्वास रखते हैं कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, तब मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है।

भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य निभाता है वही सच्चा कर्मयोगी है। सूर्य प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है। नदी बिना किसी लालच के निरंतर बहती है। वृक्ष बिना किसी भेदभाव के फल और छाया देते हैं। प्रकृति का हर तत्व हमें निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाता है।

जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं ना, तब हमारा ध्यान केवल अपने कर्म को उत्तम बनाने पर केंद्रित हो जाता है। और जब कर्म उत्तम होते हैं तो फल भी समय आने पर अवश्य उत्तम मिलता है। हो सकता है कि परमात्मा हमें वो ही ना दे जो हम मांग रहे हैं, लेकिन वो हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होते हैं।

जीवन में कभी निराश ना हो श्रोताओं, अपने कर्तव्य को पूरी लगन और श्रद्धा के साथ निभाते रहें, भगवान पर विश्वास रखें और हर कर्म को उनके चरणों में अर्पित कर दें। याद रखें, बीज बोना हमारा काम है लेकिन उसे वृक्ष बनाना परमात्मा का काम है। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसा बल दीजिए कि हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन कर सके। हमें कर्म करने की शक्ति दें और फल की चिंता से मुक्त करें। हमारा विश्वास सदैव आप पर बना रहे और हमारा जीवन निष्काम कर्म और भक्ति का सुंदर संगम बन जाए। राधे राधे, प्रणाम, शुभ दिन।

秋，把所有思念都轻轻安放，愿这纯净旋律陪你在阴天的午间静静想念，慢慢释怀。请听纯音乐故乡的原风景。

0: सुनते हैं समाचार अशिता के साथ। आपको नमस्कार अशिता।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। गजीदा उसलाकियों में कल शाम हुई हिंसक घटना में 28 वर्षीय गायल सादाल की जान चली गई। उससे जुड़ी परिस्थितियों को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। बिजतोंबू के रहने वाले गायल सादाल पर रॉबर्ट स्कॉट स्ट्रीट में कथित हमला किया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा जुटाई गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना की पृष्ठभूमि में गुरुवार को हुआ एक विवाद बताया जा रहा है। जांचकर्ताओं के मुताबिक गायसादाल एक गली में अपने मोबाइल पर संगीत सुन रहे थे, तभी कथित रूप से मोहम्मद शेख बुलाकी की मां से उनका संपर्क हुआ और उन्हें धक्का लग गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि अगले दिन यानी कल ये तनाव गंभीर झड़प में बदल गया। उसके चलते इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। घटना में घायल हुए 22 वर्षीय मोहम्मद शेख बुलाकी का ऑपरेशन किया गया और उन्हें पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती रखा गया है। पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। पोर्टरिस के M1 राजमार्ग पर आज तड़के हुए एक सड़क दुर्घटना में 21 वर्षीय योहान पार्सों की मृत्यु हो गई। पिस्त्रिविया के रहने वाले योआन पार्सों का शव सड़क पर अचेत अवस्था में मिला, जबकि उनकी मोटरसाइकिल उनसे लगभग 30 मीटर दूर पड़ी हुई थी। सूचना मिलने पर लाइन बैरक्स पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। जांचकर्ताओं द्वारा सेफ सिटी निगरानी प्रणाली के फुटेज का अवलोकन करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल चालक ने अपने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद उसकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे लगे लोहे के सुरक्षा बैरियर से टकरा गई। फ्रांस के सैंडोनी कोरेक्शनल ट्राइब्यूनल ने रेनियन और मॉरिशस के बीच संचालित बड़े पैमाने के कैनाबिस तस्करी नेटवर्क से जुड़े मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में मॉरिशस के कुछ नागरिकों सहित कुल 12 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। आरोपियों पर रेनियन से मॉरिशस तक सैकड़ों किलोग्राम कैनाबिस की तस्करी करने का आरोप था, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत कई मिलियन यूरो बताई गई है। ये मामला वर्ष 2022 में की गई एक बड़ी जब्ती कार्रवाई के बाद सामने आया था, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने नशीले पदार्थों की खेप को बरामद किया था। अदालत के फैसले के साथ इस बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। एक बार फिर हम इसको बात करते हैं फुटबॉल के स्कोर के बारे में। फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेली गई मैचों का स्कोर रहा। ग्रुप बी में कतर और स्विट्जरलैंड का ड्रॉ रहा 1-1। आज सुबह 2 बजे ब्राजील का सामना हुआ मोरक्को के साथ, स्कोर रहा 1-1, ये भी ड्रॉ। और आज सुबह 5 बजे खेले गए ग्रुप सी में हाइची स्कॉटलैंड का स्कोर रहा हाइची 0 स्कॉटलैंड 1। और ग्रुप डी में 8 बजे आज सुबह ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ तुर्की से और स्कोर रहा ऑस्ट्रेलिया 2-0। आज रात 9 बजे हम आपको याद दिला देते हैं कि ग्रुप ई में जर्मनी खेलेगा क्यूरासाओ के साथ और ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान रहेगा रात के 12 बजे। और कल सुबह 3 बजे आइवोरी कोस्ट खेलेगा इक्वाडोर के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टर्मर ने बताया कि ब्रिटिश सशस्त्र बलों ने रविवार की इंग्लिश चैनल में रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट से जुड़े एक तेल टैंकर को रोककर उस पर कार्रवाई की। लगभग 6 घंटे तक चले इस अभियान में रॉयल मैरीन्स के कमांडो नेशनल क्राइम्स एजेंसी के विशेष रूप से प्रशिक्षित कानून प्रवर्तन अधिकारियों तथा

0: रॉयल एयरफोर्स के सहयोग से जहाज पर चढ़े। ब्रिटेन की के रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्मिथस नामक इस जहाज को इंग्लैंड के दक्षिण तट के निकट निगरानी में रखा गया है, जबकि मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि ये फैसला अभियान रूस के खिलाफ एक और बड़ा झटका है और उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो यूक्रेन युद्ध को समर्थन देने में भूमिका निभा रही है, उन्हें छिपने नहीं दिया जाएगा। ब्रिटेन का आरोप है कि रूस अपने तेल निर्यात पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए शैडो फ्लीट नामक टैंकरों के नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ ही सुन पाएंगे शोक समाचार। कॉम्बानान ग्रांबोआ में 46 साल के 46 years old के श्री महेश्वरनाथ सिंह सुंदर, श्री महेश्वरनाथ सिंह सुंदर जिन्हें सचिन के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी माँ लीलावती सुंदर के घर ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्राणवायु की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 10 AM कश्मीर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के 59 years old के श्री महेश बिहारी जिन्हें चिंग के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स के शमशान भूमि ले जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM रॉबर्ट कैनेडी स्ट्रीट रेनियो मोरेल पेटी राफ्रेमे इक्यासी साल के 81 years old के श्री भरद्वाज सुकन जिन्हें लाल सुकन के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी निशी सुकन के घर रेनियो मोरेल पेटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 11 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: You're listening to RM3 Radio.

0: खाना सफर।
1: जी हाँ, 12:14 हुए हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड आफ्टरनून। हमेशा की तरह हर संडे आती हूँ देवीना और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो ऑन और एम फ्री रेडियो मनोरंजन, सुहाना सफर प्रोग्राम। 3 घंटों का सफर होगा। आज मौसम भी जैसे हमारे शो के साथ पार्टनरशिप कर लिया।

या है, कहीं हल्की फुहारें हैं, कहीं ठंडी हवाएं, तो कहीं बारिश की बूंदें खिड़की पर अपनी मधुर धुन बजा रही हो। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ इलाकों में टिप टिप बारिश हो रही है, कहीं हल्की सी धूप है, पर यहाँ तो रेडियो पर प्यार और गीतों की बारिश आप सबों के साथ। तो बारिश का मौसम अपने साथ लाता है यादों की खुशबू, गर्मा गर्म चाय का स्वाद या फिर लंच और दिल को छू लेने वाले गीत। तो फ्रेंड्स, अगले 3 घंटों तक हम करेंगे म्यूजिक मस्ती मेमोरीज और साथ में बारिश का जो मैजिक है उसका शानदार सफ़र एक साथ करेंगे। तो बारिश की हर बूंद में छुपा है एक अफसाना और हर गीत में बसा है किसी का दीवाना। तो चलिए, शुरुआत हो चुकी है इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। सुरेश वाडकर साहब साथ में लता जी थी, और अभी के लिए हम किशोर दा को बुलाएंगे और उनकी आवाज़, प्यारी सी आवाज़ में कुछ गाना हम सुनेंगे। आशा जी की आवाज़ भी साथ में होगी। फिल्म है प्रेम नगर और मैसेजेस के लिए आप को तो पता ही है 5250-6200-5206200 और कॉल्स के लिए हमने कॉल्स लेना शुरू कर लिया है, बातें करना शुरू कर लिया है 4028070-4280-76। तो प्रेम नगर मूवी का गाना आप सबों के लिए ऑन ऑरएम फ्री रेडियो मनोरंजन।

0: RM3 Radio. Radio.
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस

0: टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: You're listening to RM3 Radio Man।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: ये था फुटबॉल के फैंस के लिए। अगर आप लोग एमबीसी प्ले डाउनलोड करना चाहते हैं कैसे करना चाहिए, ये था फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जो लोग इस वर्ल्ड कप का मजा ले रहे हैं तो एंजॉय इट और साथ में हमारा साथ देते रहे ऑन एमबीसी और इन फ्री रेडियो मनोरंजन। हाँ जी, कहीं कहीं बारिश हो रही है, ठंडी हवा तो है ही, आज लगता है जैसे सर्दी आ ही गई, मगर इन बिटवीन तो गर्मी आ ही जाती है। और गर्मा गर्म लंच उस पर और ऊपर से खूबसूरत गाने और आप लोगों का साथ, तो बस और क्या चाहिए इस संडे को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो बन अपेची शुभहार जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आप लंच ले रहे हैं, बस एंजॉय इट और साथ में गाने जो हैं आपके लिए ही हैं। और मौसम का फायदा उठाते हुए मूड में आ गई है हमारी जो प्यारी श्यामा रघुनंदन जी हैं गांव से, और खाना तो गर्मा गर्म है ही, मगर भागते भागते हमें फ़ोन किया। थैंक यू सो मच श्यामा जी हमेशा की तरह साथ देने के लिए। और उसकी दिमाग ये गाने सुनकर ना उनके दिमाग में जैसे कंप्यूटर चल रहा था, इतने गाने हैं उनके दिमाग में, क्या कहें। तो श्यामा जी ऐसे ही लगे रहिए, हमारा साथ देते रहिए और खूबसूरत गानों को का जो सिलेक्शन है आपके दिमाग में हमारे साथ शेयर करते रहें। तो शिकस्त मूवी का गाना आप सुनना चाहती हैं और घूंघट जब ये शब्द आया ना तो बस उनको ये गाना याद आया, कारे भद्रा टू ना जा, लता जी की आवाज़ में। और साथ में ये गाना जाएगा हमेशा की तरह भैया जयप्रकाश के लिए, भाभी है नम्रता, केशव युधिश, साथ में उनकी जो प्यारी सहेलियां हैं नंदिनी ओकली वीना रामफल और जो भी हैं जितने उनके फ्रेंड्स हैं उनके जो फैमिली हैं सभी के नाम ये गाना।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: बारह बजकर 36 मिनट हुए हैं. कुछ नए गीत, कुछ पुराने गीत, ये होता है सुहाना सफ़र प्रोग्राम में. स्पेशल संडे आफ्टरनून को होता है ये सुहाना सफ़र 3 घंटों का. वैसे बारिश का जो मौसम होता है ना, सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी गर्मी और परेशानियां क्यों ना आए, एक न एक दिन राहत की फुहार ज़रूर आती है, है ना. और जिंदगी जो है ये बारिश की तरह होती है, कभी तेज़ कभी धीमी, लेकिन अगर दिल खुला हो तो हर मौसम खूबसूरत लगता है. बस ऐसे ही कुछ प्यार भरी बातें हम करते रहेंगे आप सबों के साथ. और ये जो गाना हम सुनने वाले हैं, ये जो है भूपेंद्र साहब की आवाज़ में, साथ है मिताली सिंह, और एक्चुअली एक गज़ल है. और ये जाएगा साधना जी के लिए. साधना ऑरिवे दे क्रियोल, वे प्यारे से मैसेज भेजती हैं. नूब डे टू डे बट हैप्पी रेनिंग संडे विद गर्मा गर्म चाय. वावा, एक प्यारा सा गीत अपने परिवार के लिए फ्रॉम रिवियर दे क्रियोल. बेटी दामाद, नाती नातिन मोडालबेया से, और बेटा है बहू नीतीश, काविना नाती क्रियान ताश्विक ऑफ यूनियन पार्क, बेटा बहू कुशल संहिता, बेटी मानशा फ्रॉम दुबई, और पूरे जीवन फैमिली के लिए ये होगा आप सबों के लिए. और जितने लोग इस गज़ल को पसंद करते हैं, ये प्यार का मौसम है और आपका साथ है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन.

जी हाँ, ये था गाना ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अनीता जी फिकॉन्फ्लैक्स से, और ये गाना जानवर मूवी का था। पास बुलाती हैं सभी माताओं के लिए, उन्होंने ये मांग की थी, और लिसनर्स के लिए, हमारे टीम के लिए भी, थैंक यू अनीता जी, और आपके परिवार के लिए भी था। और अगला गाना जो है वंस अगेन द मेमोरी लेन, वापस चलते हैं बहुत दूर 1968 की ओर, फिल्म है आदमी, रफ़ी साहब की आवाज़ में, मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, और इसकी मांग की है सुरिनाम से जयश्री जी ने, जयश्री जी जो हमेशा साथ देती हैं, थैंक यू सो मच, और ये गाना उनकी माताजी के लिए और सभी लिसनर्स के लिए।

0: आओ आओ आओ सीताफल खाओ।
1: मैं मेल चाहू मन का, मैं फूल नंबर वन का, तुम ठीक ही कहती हो मैडम, होए कहती हो मैडम, होए कहती हो मैडम, मैं पागल हूँ।

0: का उल्लू हूँ, सूखा हुआ टुल्लू हूँ, तुम ठीक ही कहती हो मैडम, हाय कहती हो मैडम, हाय कहती हो मैडम, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तुम बेगम हो।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जरंगीली मिजाज वाले किशोरदा की आवाज में था फ्रॉम द मूवी गर्लफ्रेंड, और ये गाना मांगा था नंद जी वाकवा से। नंद जी, आशा करते हैं कि आपने इस गाने को एंजॉय किया। और अगला गाना जो है हमें ले जाएगा 1 बजे तक, और यहाँ पर समाचार आप सुनेंगे और इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब अगला गाना है हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में, फिल्म है 20 साल बाद, और इस गाने की मांग की है ग्रीष्म फ्लक्स से दिव्यानी जी, पूरे देवधारी परिवार और छेदी परिवार के लिए, और साथ में पूरे MBC टीम के लिए। थैंक यू। सो बस कहीं मत जाइए, आप जो भी कर रहे हैं हमारा साथ देते रहे, और इंफ्रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर प्रोग्राम स्पेशल संडे आफ्टरनून शो।
2: जरा नजरों से कह दो जी,

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: आपको नमस्कार या

0: नमस्कार हंसिनी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। रेजिडेंस लाक्रिया में कल शाम हुई हिंसक घटना में 28 वर्ष घायल सादाल्ला की जान चली गई और उससे जुड़ी परिस्थितियों को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। बेजू तोंबो के रहने वाले गाय सादाल पर रोबेस्कट स्ट्रीट में कथित हमला किया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा जुटाई गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना की पृष्ठभूमि में गुरुवार को हुआ एक विवाद बताया जा रहा है। जांचकर्ताओं के मुताबिक गाय सादाल एक गली में अपने मोबाइल पर संगीत सुन रहा था, तब भी कथित रूप से मोहम्मद शेख बुलाकी की मां ने उसका संपर्क हुआ और उन्हें धक्का लग गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि अगले दिन यानी कल ये तनाव गंभीर झड़प में बदल गया, जिसके चलते इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। घटना में घायल हुए 22 वर्ष मोहम्मद शेख बुलाकी का ऑपरेशन किया गया और उन्हें पुलिस गिरफ्तारी निगरानी में अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है और घटना के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। पोटली के M1 राजमार्ग पर आज तड़के सुबह एक सड़क दुर्घटना में 21 वर्षीय युआन पर्सन की मृत्यु हो गई। पिछथविया के रहने वाले युआन पर्सन का शव सड़क पर अचेत अवस्था में मिली, जबकि उनकी मोटरसाइकिल उनसे लगभग 30 मीटर दूर पड़ी हुई थी। सूचना मिलने पर लाइन बराक्स पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। जांचकर्ताओं द्वारा सेफ सिटी निगरानी प्रणाली के फुटेज का अवलोकन करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल चालक ने अपने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद उसकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे लगे लोहे के सुरक्षा बैरियर से टकरा गई। फ्रांस के सैंडनी क्रैक्शनल ट्राइब्यूनल ने रियूनियन और मॉरिशस के बीच संचालित बड़े पैमाने के कैनाबिस तस्करी नेटवर्क से जुड़े मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में मॉरिशस के कुछ नागरिकों सहित कुल 12 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया है। आरोपियों पर रियूनियन से मॉरिशस तक सैकड़ों किलोग्राम कैनाबिस की तस्करी करने का आरोप था, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत कई मिलियन यूरो की बताई गई है। ये मामला वर्ष 2022 में की गई एक बड़ी जब्ती कार्रवाई के बाद सामने आया था, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने नेशनल नशीले पदार्थों की खेप को बरामद किया था। वैश्विक स्तर पर फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेले गए मैचों का स्कोर रहा। ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड ड्रॉ 1-1। आज सुबह 2 बजे ब्राजील का सामना हुआ मोरक्को के साथ, स्कोर रहा 1-1, ये भी ड्रॉ। और 5 बजे खेले गए ग्रुप सी में हाइटी स्कॉटलैंड मैच का स्कोर रहा हाइटी 0 स्कॉटलैंड 1। गौरतलब है कि हाइटी 52 सालों यानी 1974 के बाद 2026 में ये विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। और ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया 2 का सामना हुआ और तुर्की 0, मैच 2-0 पर समाप्त हुआ। ग्रुप ई में जर्मनी खेलेगा कुराकाओ के साथ, ये कह सकते हैं कि एक दिलचस्प मैच होगा। और रात 12 बजे ग्रुप एफ में नेदरलैंड वर्सेस जापान तथा ग्रुप ई में कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट खेलेगा इक्वेडोर के खिलाफ। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: रॉयल रोड कॉची मिलिटिया में 80 साल के 80 ओल्ड के श्री कृष्ण दत्त संधुराम जो शोफेयर टैक्सी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके रिश्तेदार सरवन सिंह संधुराम के मकान रॉयल रोड कॉची मिलिटिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए व्हील में कॉची मिलिटिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। कश्मीर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश बिहारी जो चिंग के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके मकान कश्मीर रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: चौरानवे 95

0: 96.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: आइए जानते हैं MBC Play पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: RM3 Radio.

वेलकम बैक ऑन ऑरम फ्री रेडियो मनोरंजन हो चुका है अभी 1:14 पच्चा सावन बसंत बहार फ्रॉम द मूवी सिंदूर बहुत ही प्यारा सा गाना हमेशा हम सुनना चाहते हैं और दिल को खुश कर देता है ना और आज का मौसम कह रहा है जो छाता है ना साथ रखना जरूरी है लेकिन मुस्कान साथ रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है तो मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना और फ्रेंड्स ज़िंदगी में खुश रहने के लिए कभी ना कभी बस एक प्यारी सी बारिश एक अच्छा गीत और साथ में कुछ खूबसूरत यादें ही काफ़ी होती है ना और बारिश और संगीत का रिश्ता बिल्कुल पुराने दोस्तों जैसा है जब बूंदें गिरती हैं तो दिल खुद ब खुद कोई धुन गुनगुनाने लगता है बादल जब मुस्कुराते हैं तो धरती गीत सुनाती है और अब पेश है एक और मिलोडियस ट्रैक और इस गीत की मांग वैसे यशुदास की आवाज़ साहब की आवाज़ में कोई गाना सुनना चाहती है प्रकाशवती जी और बेल्जियम और प्रकाशवती जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून आपको भी गुड आफ्टरनून प्रकाशवती जी बेल्जियम में मौसम सनी सनी 16 degrees वाओ अच्छा है और आप कह रही हैं स्विमिंग फिनिश किया अभी वाओ आप तो

इसे बहुत एथलेटिक टाइप की हैं और अपने आप को फिट रखती हैं, ऐसा ही होना चाहिए प्रकाश वेती जी, बी हेल्थी और बी हैप्पी। सो यशुदास साहब की आवाज़ में एक गीत, और ये गाना जो है छोटी सी बात मूवी का से लिया गया है। सो बस इस गाने को आप हमारे साथ गुनगुनाइए बस। और आपको बता देते हैं कि अभी से लेकर 2 बजे तक आपके जो रिक्वेस्ट है हम चला रहे हैं पुराने गानों का, और 2 बजे के बाद 90s के ऊपर के गाने आपको हम चलाएंगे। अगर आपको अब रिक्वेस्ट करना है तो 90s के ऊपर के गाने ही आप मांग कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो प्लेलिस्ट है फुल हो चुका है 2 बजे तक।

0: RM3 Radio. Radio.
1: प्यार भरा म्यूज़िक, ब्यूटीफुल वन, और हमेशा हमारे जहन में रहता है ये गाना, क्योंकि इस गाने में बहुत छुपा हुआ है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दर्द, और मिलन भी है, जुदाई भी है। और फिल्म है वो पुराना मंदिर, और इस गीत की मांग की है नमस्ते जी विश्वानी डुमन जी और वाकवा। ये गाना उनकी बहन इंदिरा, शारदा, सहेली, नीला प्रतिभा, साथ में है शोभा और गीता गजाधर, और पूरे टीम के लिए, पूरे लिसनर्स के लिए। थैंक यू।

रही हैं सीता गोयराम को जो नानी बनी हुई हैं उनकी बेटी हैं स्वीती उनको जुड़वा बच्चा हुआ है बधाई हो लॉट्स ऑफ लव आशीर्वाद है ब्लेसिंग्स है पूरे परिवार की ओर से तो सभी नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी न्यूबॉर्न हैं सभी को भेज रहे हैं लव और हम आशा करते हैं कि जो बेबी हैं वो हट्टे कट्टे वो स्वस्थ रहें सो सभी परिवार की ओर से ये गाना सो स्वीट स्वीट बेबीज़ के लिए सीता जी

0: RM3 Radio. Radio.
1: ये अगला गीत जो है फ्रॉम द मूवी हीरा पन्ना, बहुत दूर चले जाना है लता जी प्यारी सी आवाज में, और ये गाना मांगी है बाबू अनटवा जी ने। काठोबोन से कह रहे हैं न गर्मी है न ठंड है, बस अच्छा लग रहा है ये मौसम जी। और ये गाना एक्चुअली उनके सभी देवानंद के फैंस के लिए, सभी परिवार के लिए, हमारी टीम के लिए भी थैंक यू सो मच। और साथ में ये गाना इसमें नाम जोड़ते हैं नमस्ते जी, ये है ये गाना हम नहीं चला पाएंगे मगर इसमें नाम जोड़ते हैं तो शारदा है, शारदा सुंदर, सभी सुंदर परिवार के लिए और सभी हमारे जो आर एम थ्री फैमिली के लिसनर्स हैं थैंक यू सो मच, शुक्रिया, हैप्पी संडे आपको भी।

जहाँ हरियाली रास्ता हरियाली और रास्ता विद्या जी लाहौजा से हैं की मांग पर हैं बच्चों के लिए सभी लिसनर्स के लिए एक कहानी सुनेंगे बस ये कहानी लता जी की आवाज में एक था राजा एक थी रानी

0: Continuous music.
1: जी हाँ, रहे न रहे हम महका करेंगे, हम और आप, वैसे हमारी दोस्ती कायम रहेगी। हम यहाँ रहे या न रहे, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। आज पता नहीं कल क्या हो, बस आज जो है इसमें हम आनंद ले, इसका आनंद ले, और दोस्ती जो है हमेशा रहे। तो ये गाना ये है माला और जगह पर जी, माला जी बच्चों के लिए, कनील, कबीर, कनीश, कनील, सत्यम, शिव, केविन, किरण और सभी परिवार के लिए, और साथ में मालिनी जी और मॉडल बे। आपने जो गाना मांगा है वो 2 बजे तक वो हम नहीं चला पाएंगे, तो बस

जैसे मौसम में जब बारिश होती है अगर रपट जाए तो क्या होगा, आप बताने आएंगे ना। तो बस ये गाना है, ये गाना जाएगा ललिता जी की ओर से, कलबस से है, और रेनी वेदर में सभी के लिए ये गाना हो जाए। और साथ में ये गाना हम चलाने वाले हैं एक्चुअली जो स्वीट स्वीट सी लेडी हैं, उन्होंने सुबी जो है, तो ये गाना हम इसमें नाम जोड़ते हैं सुबी और उनके पति के लिए, साथ में उनके बेटे बेटा जो है वाकवा से।

1:56 हुए हैं और मिलते हैं इन द थर्ड आवर ऑफ सुहाना सफर स्पेशल संडे आफ्टरनून शो. और इसके बाद समाचार और आपके साथ हम जाएंगे 90s की दुनिया में से ऊपर भी. और प्यार भरे गाने का सिलेक्शन हमने कर लिया है, सो बस समाचार के बाद मिलते हैं.

ज्योति जी अब छत बिनारे हम आपको नहीं भूले, बस ये गाना आशनी रेखा सुरेखा मधुब फैमिली के लिए। ज्योति जी थैंक यू सो मच।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। रेजिडेंस लाक्रिया में कल शाम हुई हिंसक घटना में 28 वर्षीय गायल सादल की जान चली गई। उससे जुड़ी परिस्थितियों को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। बेजुतोंबो के रहने वाले गायल सादल पर होबेस्कॉट स्ट्रीट में कथित हमला किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा जुटाई गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना की पृष्ठभूमि में गुरुवार को हुआ एक विवाद बताया जा रहा है।

0: हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक कैर सादाल एक गली में अपने मोबाइल पर संगीत सुन रहा था, तब कथित रूप से वो मोहम्मद शेख बुलाकी की मां से टकरा गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस का कहना है कि अगले दिन हालात बिगड़ गए। घटना में घायल 22 साल के मोहम्मद शेख बुलाकी का ऑपरेशन किया गया और उन्हें पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती किया गया है। पोटली के अमान मोटरवे पर आज तड़के सुबह एक सड़क दुर्घटना में 21 साल के योहान पर्सन की मृत्यु हो गई। रिविया पिचित रिविया के रहने वाले योहान पर्सन का शव सड़क पर मिला, जबकि उनकी मोटरसाइकिल उनसे लगभग 30 मीटर की दूरी पर थी। सूचना मिलने पर लाइन बराक्स पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। जांचकर्ताओं द्वारा सेफ सिटी निगरानी प्रणाली के फुटेज देखे गए। इससे पता चला कि मोटरसाइकिल चालक ने अपने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था, जो वहां पर लोहे के सुरक्षा बैरियर से टकरा गया। विदेश की खबरों में फुटबॉल विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेले गए मैचों का स्कोर रहा। ग्रुप बी में कतर स्विट्जरलैंड ड्रॉ 1-1। आज सुबह 2 बजे ब्राजील का मुकाबला हुआ मोरक्को के साथ, स्कोर रहा 1-1 ड्रॉ। और 5 बजे खेले गए ग्रुप सी में आईटी स्कॉटलैंड मैच का स्कोर रहा आईटी 0 स्कॉटलैंड 1। गौरतलब है कि आईटी 52 साल बाद 2026 के इस विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। आज रात 9 बजे ग्रुप बी में जर्मनी खेलेगा कुराकाओ के साथ और ग्रुप एफ में नेदरलैंड्स वर्सेस जापान तथा ग्रुप ई में कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट खेलेगा इक्वाडोर के खिलाफ। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। कश्मीर रोड गुडलैंड्स में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश बिहारी जो चिंग के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनके मकान कश्मीर रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM रा रोड कच्चे मिलितिया में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णदत्त सांदूराम जो शोफेयर टैक्सी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके रिश्तेदार सरवन सिंह सांदूराम के मकान रा रोड कच्चे मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
2: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी

0: या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800.
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

जी हाँ, सुहाना सफर के इस तीसरे पहर में हम आप सबों का दिल से स्वागत करते हैं। वार्म वेलकम एवरीवन। हो चुका है 2:12 और आज है संडे 14th of June, संडे 14 जून 2026 ऑलरेडी। हाँ जी, हमेशा की तरह देवीना है आपके संग और चल रहा है सुहाना सफर। और बारिश का मौसम हमें धीमा होने सिखाता है, कुछ पल रुक कर, कुछ यादें संजो कर और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करके। खुशियाँ मौसम की मोहताज नहीं होती दोस्तों, लेकिन बारिश उन्हें और खूबसूरत बना देती है। तो अब कुछ नए 90s के बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हम सुनाने वाले हैं और कुछ तो आपके ही अनुरोध पर हम चलाएंगे। जैसे यहाँ पर है मौत एट ब्लॉन्च के नवीन भाई जी। नवीन जी, ये गाना आपके लिए विनोद राठौर साहब की आवाज़ में, साथ में आशा जी। फिल्म है चांदनी और पर्वत से काली घटा छाए तो क्या होगा। तो आपके लिए नवीन भाई आपको कहेंगे हैव ए नाइस वीक डे। और जो वीक है और जितने लिसनर्स हैं, जो आने वाला सप्ताह है, आप सबों के लिए खुशगवार हो और फुल ऑफ एनर्जी हो। बस ये गाना आप सबों के लिए।

हाँ।

जहाँ मैं चांदनी नहीं हूँ, मैं हूँ देवीना जी। जहाँ और ये प्यारा सा गीत चांदनी फिल्म का उन्होंने मांगा था मनोज सोहन जी ने रिस्पॉन्स के पीछे से, साथ में उसकी प्यारी सी वाइफ नजीमा जी ने। और दे आर हैविंग ए रियली ब्यूटीफुल संडे आफ्टरनून, और उनको दिल कर रहा था ये गाना सुनने का। तो ये रहा आपके लिए वो जोनी मुखर्जी साहब, साथ में थी लता जी, और पिक्चराइज हुई थी इसमें द ब्यूटीफुल श्रीदेवी जी, और साथ में थे ऋषि कपूर साहब। और ये गाना खास तौर पर मांग रहे हैं ऑल्सो फॉर गया सिंह आश्रम के रेसिडेंस के लिए, जितने लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, और दिल से याद करते हैं आप सभी को। आप जहां भी हो, हम आपके साथ हैं, और सुनते रहिए आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। हाँ जी, दिल क्या करे, इसमें नज़र आए थे अजय देवगन साहब, साथ में थी काजोल देवगन, और ऑल्सो इसमें बहुत प्यारे प्यारे से गाने थे, इसमें महिमा चौधरी भी थी इसमें। तो बस इस गाने की मांग की है गायत्री जी ने, और हमारे लिए ये भी थैंक यू सभी लिसनर्स के लिए, हटके वाला गाना है। और ये गाना बहन अमृता के लिए, नेहाक्षी दी दिव्या, सुधीर कमलेश सुधा, मीरा भाभी, साथ में गिरीशा मेधा, सभी परिवार के लिए। और अगर आप लोग अभी आराम कर रहे हैं, आराम करते करते इस गाने का को आप एंजॉय कीजिए। अनुराधा पौडवाल साथ में उदित नारायण साहब।

हाँ जी, आई लव यू ऑल। और ये गाना जो है राजू बन गया जेंटलमैन से लिया गया है अलका याग्निक, साथ में कुमार सानू साहब। और इसकी मांग की है, इस गाने को प्यार से मांगा है हरीश जी ने बबासेन से।

2:54 हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन से और 15 मिनट में लगभग हमारा और आपका साथ रहेगा। बस अभी के लिए ये गाना ब्यूटीफुल सा रोमांटिक गाना, हम लोग ऐसे मौसम में रोमांटिक हो ही जाते हैं। तो मौत डाल दिया कि अनिता जी, करुणा, अमृता, विनीता, कविता सभी दोस्तों के लिए फिल्म आग का गाना है कुमार सानू साधना सरगम की आवाज़ों में, तुम हो सांसों में तुम। बस ये गाना आप एंजॉय कीजिए।

जो इस प्यारे से गाने में नाम जोड़ते हैं नमस्ते जी रंभा जी अमृता अमीशा फ्रॉम स्विट्जरलैंड. सो आप जहाँ भी हो हमें सुन रहे हो मॉरिशस में या आउट ऑफ मॉरिशस आप सबों को हमारा सलाम है नमस्ते है एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू.

0: Continuous music. RM3.
1: जी हाँ, हमारे दिल का पता आपको पता है क्या है? RM3 रेडियो मनोरंजन MBC मोका। हाँ जी, आप सुनते रहे हमें। और नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून आपको भी। ज्ञान बिहारी जी, विशिंग यू ए फ्रूटफुल संडे। थैंक यू, योर ओल्डी सॉन्ग शो वाज वेरी फंटास्टिक। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। एंड नाइस टू लिसन। अभी के लिए वे क्या सुनना चाहते हैं ज्ञान बिहारी जी? ये गाना फ्रॉम द मूवी जानम, वाइफ सबिता के लिए, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव और सुनील रानी, एंड फॉर ऑल RM3 लिसनर्स के लिए। थैंक यू सो मच। साथ में शामुनी से मीता बहू जी हमें सुन रही हैं, कह रही हैं नाइस सिलेक्शन मीता जी, आपके लिए भी, पूरे परिवार के लिए भी ये गाना।

जहां जानम जानम देखते ही देखते आज का हमारा स्पेशल एडिशन बारिश पर ठंड पर अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया। उम्मीद है बारिश की फुहारें, सुरीले गीतों और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स ने आपके दिन को और भी खुशनुमा बना दिया होगा। बारिश की बूंदें रुक सकती हैं, लेकिन खुशियों की बरसात कभी नहीं रुकनी चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। तो मैं हूँ देवीना, आपसे इजाज़त चाहूँगी। कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग द रेन एंड कीप लिसनिंग टू आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। और जो अगला गाना है, लास्ट गाना ऑफ टुडे, गुलाम अली साहब की आवाज़ में, फिल्म है बेवफा, और ये गाना स्पेशली रेहाना जी, प्यारे से रेहाना जी आपके लिए। और हम फिर से मिलते हैं शाम को 6:30 बजे, होगा नई सोच और दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में। तो नमस्कार, शुभ दोपहर, फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द, और हमारे बाद आएंगे अजय प्रताप सिंह।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार देव। नमस्कार परी। सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस के रेजिडेंस लाक्यूक क्षेत्र में हुई एक हिंसक झड़प दुखद घटना में बदल गई। बेजुतोंबो निवासी 28 वर्षीय गायल सदल की कल शाम रोबस्कोट पर हुई एक घटना में घायल होने के बाद मृत्यु हो गई। इस संदिग्ध स्थिति की सूचना देने वाली गुमनाम कॉल मिलने पर वालिद फैत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें 22 वर्षीय मोहम्मद शेख बुलाकी गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े मिले। उन्हें तुरंत जितव अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई और बाद में पुलिस निगरानी में भर्ती किया गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पुलिस अब तक उनका बयान दर्ज नहीं कर सकी है। फ्रांस के सेंटनी करेक्शनल ट्राइब्यूनल ने रियूनियन और मॉरिशस के बीच संचालित बड़े पैमाने के खनविज तस्करी नेटवर्क से जुड़े मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में मॉरिशस के कुछ नागरिकों सहित कुल 12 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। आरोपियों पर रियूनियन से मॉरिशस तक

0: सैकड़ों किलोग्राम कैनबिस की तस्करी करने का आरोप था, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत कई मिलियन यूरो की बताई गई है। ये मामला साल 2022 में की गई एक बड़ी जब्ती कार्रवाई के बाद सामने आया, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने नशीले पदार्थ की खेप को बरामद किया था। अदालत के फैसले के साथ इस बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की बात करते हैं। वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो चली है और अभी के लिए क्वालिफिकेशंस राउंड चल रहे हैं। प्रारंभिक क्वालिफिकेशंस में ग्रुप ए, ग्रुप बी और से ग्रुप एफ तक मैच लग रहे हैं और कल तथा परसों के मैच को पार करके कई ग्रुप्स क्वालिफाई हो चुके हैं। फुटबॉल कप के अंतर्गत ग्रुप बी कतर, स्विट्जरलैंड 2 बजे, ब्राज़ील, मोरक्को और 5 बजे खेले गए ग्रुप सी में हाइटी स्कॉटलैंड का स्कोर रहा। गौरतलब है कि हाइटी 52 सालों के बाद विश्व कप के लिए क्वालिफाई हुआ है। 1974 में आखिरी बार इस टीम ने वर्ल्ड कप के लिए खेला था। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Continuous music. RM3.
2: ऐसा भी होता है on RM3.
3: बड़ी जालिम है ये दुनिया और बड़े ही बेदर्द है यहाँ के लोग। न दिल में दया है, न किसी के प्रति सहानुभूति। जीवन के रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं। यहाँ पर पग पग में खतरा है, पग पग पे मौत है। इंसान के मन में क्या है कौन जान सकता है? क्या चाहता है इंसान? चाहता क्या है और करता क्या है? सोचता क्या है पर क्या कर देता है? कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, आने वाले कल में क्या होगा कौन जान सकता है? कहां पर जिंदगी है, कहां पर मौत है, कोई नहीं जानता। कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, क्या जो हो रहा है सही हो रहा है, क्या जो होने वाला है वो होगा या नहीं होगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, सांसद आवास के हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों, स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह से तालुका प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन माई शो। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। यस, अद्भुत सनसनी खबरों का पिटारा भी हम खोलेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ ऐसी खबरें लाए हैं जिन्हें सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप पूछेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। तो हमारा जवाब है, दुनिया में ऐसा भी होता है।

क्या एक पिता अपने बच्चों की जान ले सकता है? नेवर। पर ऐसा हुआ है जहां साल 2025 में तमिलनाडु के नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में एक 35 वर्षीय पिता ने अपने तीन बेटियों की हत्या करके उसने खुद आत्महत्या कर ली और बाद में पता चला कि वह व्यक्ति जो है कर्ज में डूबा हुआ था, घर में बच्चों के लिए खाना नहीं था, पैसा नहीं था, सो स्ट्रेस में आकर उस व्यक्ति ने अपने तीनों बेटियों को मार डाला और उसने खुद आत्महत्या कर ली। और अभी कुछ दिन पहले गिरिद झारखंड में एक पिता ने अपने तीन बेटियों का गला काट कर उनकी हत्या कर दी। छी छी छी छी। हम बच्चे के लिए दुआ करते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, मन्नतें करते हैं बच्चे की प्राप्ति के लिए, और यहाँ एक पिता ने नशे की हालत में अपने तीन बेटियों का गला काट कर उनकी हत्या कर दी। कितनी शर्म की बात है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपने बच्चों की जान ले सकते हैं। वो बच्चे जिन्हें हम प्यार से पालते हैं और बहुत खुशी से हम उन्हें आगमन करते हैं अपने घर में, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी की बात होती है, पर यह जो व्यक्ति है इसने अपने तीनों बेटियों के गले काट कर उस दिन की हत्या कर दी। भगवान इन बच्चों की आत्मा को शांति दे। क्या करें दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ये इंसान नहीं ये दरिंदे कहलाते हैं।

और एक बार इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। हम रोएंगे, उदास होंगे, दिल टूटता है, दिल बिखर जाता है, पर जाने वाला चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए एक अलग ही दुनिया में। शाम के 3:20 हो रहे हैं, ऐसा भी होता है कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर 94.5 MHz। दोस्तों, जिस देश में हमेशा बारिश होती थी, हमेशा पानी भरा रहता था, आज उसी देश में पानी की कमी है। जी, हम बात करें हमारे देश के बारे में, मॉरिशस देश। अक्टूबर 2025 से लेकर आज जून 2026 तक तूफान नहीं आया हमारे देश में। हर साल साइक्लोनिक सीजन में तूफान आता है, और तूफान जब आता है तो उसके साथ चुरे बादलों से हमें बारिश मिलती है, पर उतनी बारिश नहीं हुई जितनी हमें उम्मीद थी। तो आजकल जलाशयों में पानी का स्तर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि बारिश हो। आप ही प्रार्थना कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं कि बारिश हो, वरना अगर बारिश नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जलाशयों में पानी की मात्रा कम होता जा रहा है, पानी का स्तर कम हो, चिंताजनक होता जा रहा है। इसीलिए हम आपसे मांग करेंगे दोस्तों कि पानी ज़ाया ना करें। पानी ही जीवन है, जीवन ही पानी है, कि नहीं? तो बारिश तो आजकल उतनी हो नहीं रही है, पता नहीं क्या होगा, पर प्रार्थना करें। और हमारी जो नानी दादी है, जो पहले के ज़माने में हर परवरी गीत गाया करती थी, मांग करते हैं कि नानी दादी लोग, आप लोग हर परवरी गाना गाएं, इंद्र भगवान की पूजा प्रार्थना करें ताकि हमारे देश में बारिश हो, वरना अगर बारिश नहीं हुई तो थिंग्स मे बी कॉम्प्लिकेटेड इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग मंथ। और पानी में कटौती भी आ सकती है।

सो रोज़ अगर हम प्रिकॉशंस लें यू नो जैसे जब हम मुंह धो रहे हैं तो टूथब्रश लगा रहे हैं तो नल बंद कर दे या स्नान करें तो स्नान करें और पानी का सही उपयोग करें ये नहीं कि आपने स्नान करे एक घंटा आप बाथरूम में गीत गा रहे हैं और पानी बाहर जा रहा है दैट्स वेरी बैड यू नो यू वेस्टिंग वाटर कुछ लोग क्या करते हैं कि रसोई घर में कुछ सब्जी धो रहे हैं सो टैप खोल दिया और फ़ोन पर बात करें एक घंटा दो घंटा सो दैट्स वेस्टिंग वाटर सो यू शुड बी वेरी केयरफुल क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि पहली बार के लिए ऐसा हुआ है कि हमारे देश में एक तूफान नहीं आया सैनिक सीजन में और उससे बारिश होती पर बारिश उतनी नहीं हुई जिससे हमें उम्मीद थी सो टेक योर प्रिकॉशन गाइस डोंट वेस्ट वाटर वाटर इज लाइफ

सो दोस्तों प्रार्थना कीजिए कि हमारे देश में बारिश हो, हमें बारिश की बहुत ज़रूरत है। अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे जलाशयों में पानी का जो स्तर है घटता जा रहा है, सो इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। और जब हम शादी के बारे में बात करते हैं, सो आपके अनुसार एक व्यक्ति कितनी बार शादी कर सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार? और अमेरिका में अभी हाल ही में एक महिला है जिसने 23 बार शादी की है। She got married 23 times. My God, can you imagine? Yes, कि 23 times इसने शादी की है। इस महिला का नाम है लिंड वुल्फ और ये रहती है अमेरिका में और इसका नाम दर्ज है इन गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। उसे सब रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस महिला ने 23 टाइम्स शादी की है और जब पत्रकारों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो कहती है कि हर बार वो शादी करती है पर उसे उसका पति अच्छा नहीं लगता। सो शी ट्राइज टू गेट एन आइडियल लाइफ पार्टनर। भाई हम तो मेरे अनुसार है, वंस आई गेट मैरिड आई गेट मैरिड, बट आई डोंट नो, इट डिपेंड। क्योंकि कुछ लोग शादी करते हैं फिर तलाक हो जाते हैं तो दोबारा शादी करते हैं, या किसी ने शादी की उसका पति का देहांत हो गया या पत्नी की मृत्यु हो गई। सो वंस अगेन यू कैन गेट मैरिड एंड स्टार्ट योर लाइफ वंस अगेन, बट 23 टाइम्स बीइंग मैरिड, वाओ, आई डोंट नो। वेल, सभी का अपना अपना विचार होता है। जैसे कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं प्यार एक इंसान से होता है, कुछ लोग कहते हैं प्यार कई इंसान से होता है। सभी के अपने अपने विचार होते हैं। सो उस महिला का नाम याद रखिएगा, अगर आप कहीं पर क्वीज पर जा रहे हैं और आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेडी हु लिव्स इन अमेरिका एंड हु हैज़ गॉट मैरिड 23 टाइम्स, उसका नाम है लिंड वुल्फ।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: ऐसा भी होता है on RM3.
4: ऐसा भी होता है आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन पर और साथ में हमारे टिकटॉक पेज पर भी सब हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं. थैंक यू जी हमें देखने के लिए और हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए भी. शाम के 3:35 हो रही है. थैंक यू जी हमें सुनने के लिए ऑन आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन. ऐसा भी होता है दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही पवित्र है, जैसे कि मक्का मदीना, मस्जिद अल हरम, वृंदावन, वाराणसी, जेरूसलम, वैटिकन सिटी, अयोध्या. जी हाँ, बहुत से ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ पर जब हम जाते हैं तो मन को सुकून पहुँचता है, मन शांत होता है. और मॉरिशस में अगर आप गंगा तालाब गए हैं, गाँव बासे गए हैं, तो आप जानते हैं कि वहाँ का जो एटमोसफियर है, वहाँ का जो मौसम है, और जहाँ हम वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो कुछ अलग ही एहसास होता है. सो दुनिया में अगर ऐसे स्थान हैं तो ऐसे स्थानों में जाना चाहिए, और अगर मौका मिले तो एक दिन मक्का मदीना भी जाना चाहिए, वृंदावन, फिर अयोध्या, वाराणसी, और बहुत ही ऐसी जगह है, बहुत पवित्र स्थान है. जब हम पवित्र स्थान में जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मन शांत होता है और अच्छे विचार आते हैं. और आज की दुनिया में अच्छे विचारों की कमी है. हम देखते हैं कि यह जो दुनिया है इसमें हिंसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा. रोज़ हम सुनते हैं कि किस देश ने किस देश के साथ लड़ाई कर दी है, या सुनते हैं कि किसी ने किसी को जान से मार डाला. सो रोज़ ऐसे सुनने में आता है सोशल मीडिया पर, दुनिया भर में. हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम समवेयर इन द वर्ल्ड, कि लोग गुस्से का शिकार होते हैं, गुस्से में आकर जो है, फ्यूरी में आकर ऐसा काम करते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है. सो इन सब गलत बातों से बचने के लिए हमें रिलीजियस प्लेसेस जाना चाहिए, जैसे हमने कहा मक्का मदीना, वृंदावन, वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी जाना चाहिए. अगर आपको विदेश जाने के लिए आपके पास वो मीन्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मॉरिशस में है, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, कोविल है, मंदिरम है. सो इन सब जगह पर जाए, लोगों से मिलें, पूजा प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम पूजा प्रार्थना करते हैं तो जो वायलेंस होता है उसका लेवल कम होता है, और हम अच्छे मार्ग पर जाते हैं और अच्छी संगति करते हैं तो अच्छा फल मिलते हैं. ऑलराइट, सो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं अगला गाना. जी हाँ, फिल्म कमीने से लिया गया है ये गीत. आशा करते हैं गीत आपको पसंद आएगा.

आजकल दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत से ऐसे देश है, द होल वर्ल्ड, यू नो, इन्फ्लेशन और प्राइसेस और बहुत महंगाई बढ़ रही है, पर एक ऐसी जगह है भारत में

जिसे हम पुत्ता परती कहते हैं और पुत्ता परती जो है यह पाया जाता है प्रशांति निलयम जी हाँ भक्तों के लिए और पब्लिक के लिए फ्री में खाना देता है स्पेशली सुबह के वक्त नाश्ता दोपहर का भोजन और शाम का भोजन सो जो भी व्यक्ति पुत्तपर्ती आता है सो उन्हें खाने को मिलता है फ्री में सो उन्हें क्या मिलता है भोजन में इडली डोसा चावल सब्जी रोटी उपमा चाय आदि मिल सकता है और बेशक आप जितना खाना चाहे खा सकते हैं आपको एक रुपया भी नहीं देना है सो साईं बाबा की ओर से साईं बाबा के मंदिर की ओर से पुत्तपर्ती निलयम में वहाँ जो मंदिर है वहाँ पर लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है इन द मॉर्निंग फिर दिन के 12 बजे और रात को सो जो भी लोग आते हैं वहाँ पर भ्रमण करने के लिए तो उन्हें मुफ्त में खाना मिलता है सो दैट्स सोशल वर्क अच्छी बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ खाने के लिए सो अगर उन्हें मुफ्त में कुछ खाना मिल रहा है सो दैट्स ए नोबल वर्क अच्छा है सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड अगर हर इंसान जिसके पास है ऑलराइट जो लोग धनवान हैं जिनके पास है साधन अगर आप देख सकते हैं कि आप गरीबों की सहायता कर सकते हैं मदद कर सकते हैं जो गरीब लोग हैं जैसे अनाथ आश्रम में हम कुछ खाना बना कर ले जा सकते हैं उनके लिए कपड़े ले जा सकते हैं या कुछ भी तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा कर जब हम करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद भी मिलते हैं सो रिमेंबर दैट प्लेस इन इंडिया दस प्लेस इसको पुत्तपर्ती निलयम साईं बाबा के एसोसिएशन है जहाँ पर लोगों को मुफ्त में खाना मिलता है इन द मॉर्निंग मिड डे एंड इन द इवनिंग नशा

वाह क्या गाना था फ्रॉम द मूवी मन। दोस्तों प्रभु ने जब संसार की रचना की है तो उसने बहुत सोच समझकर इस संसार को बनाया है और यहां पर खूबसूरत से खूबसूरत और बुद्धिमान लोग भी हैं। खूबसूरत लोगों में से आप मिलेंगे सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू, ऐश्वर्य राय, यस अमंग द लेडीज द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन ऑफ द वर्ल्ड और सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, ऐश्वर्य राय एंड हरनाज संधू। दीज पीपल वर मिस इंडिया एंड ऑल्सो मिस यूनिवर्स। वाओ कैन यू इमेजिन, यूनिवर्स में इतने खूबसूरत लोग हैं। एंड अमंग द मैन वी हैव डेविड बेकहम, ऋतिक रोशन, क्रिस हेम्सवर्थ और हेनरी कैविल। जी हाँ, ये लोग इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है कि क्या बताएं। भगवान ने इनको बहुत ही प्यार से बनाया है और ये लोग जो है बॉलीवुड के, हॉलीवुड के एक्टर भी है, बॉलीवुड के एक्टर भी है, पब्लिसिटी में भी काम करते हैं। बहुत से ऐसे ब्रांड हैं कपड़ों के या सोप के जिनमें ये लोग जो है पब्लिसिटी करते हैं। और भगवान ने इनको बुद्धि भी दी है और सौंदर्य भी, जस्ट लाइक ऐश्वर्य राय। बहुत सारी फिल्मों में उन्हें काम किया और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। एंड शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेटियस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, ऐश्वर्य राय। दूसरी ओर देखते हैं ऋतिक रोशन, वो भी वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। सो दुनिया में जैसे कि हमने कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत तो है ही, साथ में बुद्धिमान भी है, दे वेरी स्मार्ट एज वेल। क्या बात है, क्या बात है। सो आप ऐसे बहुत से लोग शायद एक दिन ऋतिक रोशन बनना चाहेंगे या ऐश्वर्य राय, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यू नो कि ये लोग जन्म से तो सुंदर है ही, पर ये लोग ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं और मैनिक्योर, पेडिक्योर, फैशन ये सब करते हैं, वॉक्सिंग ये सब होता है। यस, टू मेंटेन देयर बॉडी वी हैव टू डू ऑल दिस, तब जाके उन्हें फिल्मों में काम मिलता है, पब्लिसिटी में। एंड इवन मैन गो टू ब्यूटी पार्लर, ये ज़रूरी नहीं कि केवल लेडीज जाते हैं ब्यूटी पार्लर, आजकल पुरुष भी जाते हैं। दे टेक गुड केयर ऑफ देयर स्किन, ऑफ देयर हेयर एज वेल। सो दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, बस हम तो देख कर कहते हैं वाह कितने खूबसूरत लड़की है ये, या व्हाट ए हैंडसम गाय, या व्हाट ए ब्यूटीफुल वुमन। अगर आप भी हैंडसम और ब्यूटीफुल है और आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो क्या बात है। फैशन का जलवा रेडियो मनोरंजन पर आरएम फ्री।

फैशन का जलवा के बाद हम आपको छोड़े जाएंगे एक प्यारे से गीत के साथ फ्रॉम द मूवी कर ले प्यार कर ले. अरिजीत सिंह की आवाज, पलक मुच्छल की आवाज भी होगी तेरी सांसों में. उसी गीत के साथ ही अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा. चार बजे होगा फ्लैश न्यूज के बाद डॉक्टर पूनम साहब सुनेंगे फिल्मी गजलें. हमें टिकटॉक पर देखने के लिए और रेडियो मनोरंजन पर सुनने के लिए शुक्रिया. हमारी आपकी मुलाकात होगी आज रात के 9 बजे से 12 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम. सो विल कैच यू टुनाइट 9 PM ऑन रेडियो मॉरिशस एंड रेडियो मनोरंजन. यस, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. शाम के 3 बजे से आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें देखा, हमें सुना. लव यू ऑल, बाय बाय. अजय प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ. टेक केयर, गॉड ब्लेस. मिलते हैं आज रात के 9 बजे.

0: सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आज आप संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। एक महीने से कुछ अधिक समय में एल नीनो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना शुरू कर देगा जो 8 महीने तक चल सकता है और इसका असर मॉरिशस पर भी पड़ेगा। समुद्र विज्ञानी और पर्यावरण इंजीनियर वासेंको पेमुटु के अनुसार इस अवधि के दौरान स्थानीय मौसम अप्रत्याशित हो सकता है जिसमें लंबे समय तक सूखा, अत्यधिक भारी बारिश और कृषि, समुद्र व खाद्य सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना का सामना करने की दिशा में हमें अपने संसाधनों को तैयार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही ये दूर ही घटना लगे लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। कुछ ही महीने के भीतर दूसरी बार मॉरिशस के दौरे पर आई सेशल्स की परिवहन, बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोथ ने पिछले सप्ताह लातू के निक स्थित एनटीसी डिपो का दौरा किया। मॉरिशस के आंतरिक परिवहन मंत्री उस्मान माओमेद के साथ उन्होंने जनवरी में अपनी पिछली यात्रा के बाद से इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हुई प्रगति का जायजा लिया। ये यात्रा टिकाऊ गतिशीलता के क्षेत्र में मॉरिशस के अनुभवों से प्रेरणा लेने की सेशल्स की इच्छा का हिस्सा है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं जहां उनके आगमन को लेकर भारतीय समुदाय में भारी उत्साह है। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि श्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है और विदेशों में भारतीयों को पहले से अधिक

0: सम्मान मिल रहा है। फ्रांस में उन्होंने राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों की समीक्षा की। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 710 हो गई है। कोंगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि इन पुष्ट मामलों में इस बीमारी से जुड़ी 149 मौतें शामिल हैं। कोंगो सरकार ने कहा कि वर्तमान में लगभग 300 लोगों का अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में इलाज चल रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे अब विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे, तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप 1, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप 2, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।

0: नजर।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सुन रहे हैं RM3 पर फिल्मी गजलें और मैं हूं आपके साथ पूनम। दोस्तों, रविवार की ये शाम थोड़ी खुशनुमा है, थोड़ी नरम और थोड़ी दिल के करीब भी है। आज की महफिल में हंसी भी है, सुकून भी है और कहीं एक हल्का सा दर्द भी, जो हम सबके दिल में होता है। तो आइए इस शाम को एक साथ मिलके मनाते हैं आपके फिल्मी गजलों के प्रोग्राम में। तो मैं हूं आपके साथ पूनम।
0: RM3 रेडियो

0: गजल।
1: 4:20 हुए हैं और हम बात कर रहे हैं फिल्मी गजलों की। एक ऐसे शायर हुए हैं जिनका नाम है दाग दहलवी। लिखते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, मोहब्बत में जो खोया है वो कहीं नहीं जाता, दिल के किसी कोने में वो हमेशा रहता है। दोस्तों, कभी किसी को खोया है ना, और फिर भी लगता है वो कहीं ना कहीं यही है, पास है, कहीं नहीं गया। बस यही होती है मोहब्बत, जाती नहीं, बस शक्ल बदल लेती है मोहब्बत की।
0: RM3 Radio.

4:26 हुए हैं और आप जुड़े हुए हैं आप ही के प्रोग्राम फिल्मी गज़लों के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। ये ऐसा टाइम है जिस समय हमें सिर्फ ये चाहिए होता है, थोड़ा सा सुकून के पल और थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी चाय और थोड़े से कुछ खाने को मिल जाए। और उसके साथ में चल रही हूँ साथ साथ ये प्यारी सी गज़लें। गज़लें होती हैं जिनके साथ हमारा दिल जुड़ा होता है, जिससे हमारी रूह बंधी होती है। और जब गज़लें अपनी बात कहती हैं तो कुछ अलग ही कहती हैं। जैसे कहा जाता है, जहरा निगाह ने लिखा एक बार, वो लम्हा जब तुम मिले थे पहली बार, कभी तक दिल में महफूज है। वक्त बहुत कुछ बदल गया मगर वो एक एहसास अभी तक ताज़ा है। दोस्तों, वक्त सब कुछ बदल देता है, चेहरे, निगाहें, रिश्ते, पर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो दिल में

0: इसके तस रहते हैं, वो पहली बार मुलाकात होना, वो पहली बार मुस्कुराना, कभी किसी को गले लगा लेना, किसी का हाथ अचानक से हाथ में आ जाना, और वो मुलाकातें, वो बातें, वो पुरानी होती भी हैं पर ऐसे लगते हैं जैसे कि आज और अभी हुई हो साथ साथ।
1: RM3 Radio.

0: नजर।
1: आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज में गजल के फूल। बहुत ही प्यारी गजल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की तरफ। हमारा शायर लिखता है फिराक गोरखपुरी जी। रात भर दर्द दिल की शमा जलाता रहा, रात भर दर्द दिल की शमा जलाता रहा, तुम नहीं थे तुम्हें याद करता रहा। कुछ नहीं मांगा मैंने जिंदगी से कभी भी, बस तुम्हारी एक झलक को तरसता रहा। दोस्तों, फिराक साहब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, इलाहाबाद के थे और इलाहाबाद की मिट्टी से उठी ये आवाज़, बस कहते हैं कि अचानक से सब कुछ बदल गया। कभी किसी के लिए बिना मांगे तरसे हैं, बस एक झलक काफ़ी होती है कभी कभी उस इंसान के लिए जिसको आप देखना चाहते हैं, और इसे कहते हैं सच्ची चाहत, सच्ची मोहब्बत। और यही था, सच बात है, फिराक गोरखपुरी जी की आवाज़ में और उनकी लिखाई में।
2: RM3 Radio.

0: 4:40 हो रहे हैं और आप जुड़े हुए हैं आपके ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। जिगर मुरादाबादी लिखते हैं, एक उम्र चाहिए इस दर्द को समझने के लिए। दिल टूटा नहीं बस और गहरा हो गया है, जिसे खोया उसे भूला नहीं हम आज तक, उसका याद में जीना ये भी जीना हो गया है। तभी शायद उनका नाम जिगर पड़ा होगा। कहते हैं जिगर को कहते हैं दिल, इसलिए उन्होंने जब भी कुछ लिखा तो दिल से लिखा। जिगर साहब की शायरी में जो अजीब सी सच्चाई यह थी कि दिल टूटता नहीं बस और गहरा हो जाता है, और उसी गहराई में कहीं वो शख्स हमेशा के लिए बस जाता है जिससे आपको मोहब्बत होती है। वो इतनी गहराई में ऐसी जगह में छुपा होता है कि आप कितनी बार भी कुरेद लो, कितनी बार भी उसको निकालने की कोशिश करो, वो इंसान निकलता नहीं, वो हमेशा बस के रहता है। और शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं।
1: RM3 Radio.

0: गजल।
1: कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग शायर और शायरा हैं, पर कहते हैं सबसे बड़ी बात तब होती है जब किसी ने लिखा हो और वो भी बहुत दिल से लिखा हो। ऐसे ही हमारे एक बीच में ऐसी शायरा हैं जिनका नाम है नूरजहां। लिखती हैं, एक बात कहूँ गर मानो तुम, एक बात कहूँ गर मानो तुम, दिल देना तो सोच के देना, जो दिल दे दिया सच्चे मन से फिर कोई शिकवा मत करना। सच बात है दोस्तों, नूरजहां जी की बात बहुत ही गहरी है। मोहब्बत में शिकवे तब आते हैं जब हमारे को एक उम्मीद होती है और उम्मीद लगाकर हम किसी को देते हैं। बिना उम्मीद के दे के देखो, सच्चा प्यार तब समझ आता है। और कहते हैं सच्चा प्यार तभी समझ आता है जब किसी की उम्मीद चूरम चूर हो जाती है। कहते ख़त्म हो जाती है हर उम्मीदें, तब उस कहते ना उसके अंदर से बिल्कुल गहराई से निकल के आती है वो चाहत, वो मोहब्बत, वो प्यार जो हमारे बीच में होता है।
2: RM3 Radio.

0: नजर।
1: 4:51 हो चुके हैं दोस्तों, ये शाम यहीं ठहरती है, पर एहसास मत जाने दीजिए, इसे दिल में रखिए, किसी को दे दीजिए या बस चुपचाप महसूस करते रहिए। यही तो गजल कहती है, कुछ कहती नहीं बस सब कुछ दे देती है। अगले रविवार फिर मिलेंगे शाम से 4 से 5 बजे तक, तब तक बस मुस्कुराते रहिए। ये थी आरम 3 पर फिल्मी गजलें आपकी पूनम के साथ। इंजॉय कीजिए आपका ये लास्ट तराना। कहते हैं ना कि बहुत प्यार जब आ जाए तब आता है गजलों का समा, और ये गजलें आपकी हैं, आपके साथ रहनी चाहिए, बस इनके साथ इंजॉय कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।
0: आरम 3 रेडियो।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Continuous music.
2: RM3. Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: शाम के 5 बज रहे हैं, आप सुन पाएंगे शीतल जी का प्रोग्राम।
5: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
6: 31 मई 2026 को संगीत की दुनिया में आई एक ऐसी दुख की लहर, एक ऐसी खबर कि आंखें नम पड़ गई। ये एक ऐसी तारीख है, शायद ही भारतीय संगीत या फिर हिंदी सिनेमा के इतिहास कभी भूल पाएगी। एक आवाज चुप पड़ गई, सुरों की दुनिया की जाने माने महान हस्ती, सुरों की मलिका सुमन कल्याणपुर इस दुनिया को रुखसत कह गई। एक छोटी सी कोशिश इस महान गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित करने की।

सुमन कल्याणपुर के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने मेलोडियस अपने मखमली आवाज से कई दशकों तक संगीत की दुनिया पर छाई रही, अपना योगदान देते रही। फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम रखा नौशाद साहब के साथ। पहली फिल्म रही दरवाजा, जहां उन्होंने 5 गाने दिए। एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान तलत महमूद उनके आवाज से बेहद ही इम्प्रेस हुए। उन्हें उनका पहला ब्रेक मिला 1962 में। बात एक रात की, उन्होंने प्लेबैक दिया वहीदा रहमान के लिए और वहीदा रहमान के ऑपोजिट देवानंद मौजूद रहे। संगीतकार रहे एसटी बर्मन और गाने को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कि मेरा हमदम मिल गया। उनके इस पहली कोशिश से ही उन्हें बहुत लोकप्रियता हासिल हुई।

सुमन कल्याणपुर के बारे में बात करें तो उनका जन्म हुआ 28 जनवरी 1937 को और 89 साल के थे जब उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। सुमन कल्याणपुर आज इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे, लेकिन सुमन कल्याणपुर अपनी आवाज के जरिए इस संगीत के मंच पर भारतीय सिनेमा में अमर रह गई।

सुमन कल्याणपुर और संगीत ये जोड़ी कुछ तीन दशकों तक हिंदी सिनेमा पर छाए रहे और एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए। हर महान कलाकार के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। वहीदा रहमान, नूतन, मुमताज, सहरा बानो और लिस्ट बहुत लंबी है। सुमन कल्याणपुर में क्षमता ये थी कि हर प्रकार के गाने बड़ी काबिलियत से पेश करती थी। हर एक कैरेक्टर को समझकर वे प्लेबैक देती थी। इमोशनल गाने हो, धमाकेदार गाने हो, हर गाने को उन्होंने बड़ी खासियत से पेश किया। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर। फिल्म ब्रह्मचारी का ये गाना बेहद ही मशहूर हुआ। मोहम्मद रफी के साथ उन्होंने आवाज मिलाई। म्यूजिक कंपोजर रहे शंकर जयकिशन और गाने को लिखा शैलेंद्र साहब ने। फिल्म आई थी 1968 में।

इस महान कलाकार को दिल हमेशा याद करती रहेगी। दिल ने फिर याद किया सुमन कल्याणपुर को। अपने दौर के हर एक महान कलाकार के लिए उन्होंने आवाज दी, जहां मीना कुमारी भी मौजूद रही। जिंदगी और ख्वाब, न जाने कहां तुम हो, न जाने कहां हम हैं। म्यूजिक डायरेक्टर उस दौर के रहे दत्ताराम वाडकर, गाने को लिखा कवि प्रदीप ने। सुपरहिट गाना रहा, जो कि आज भी लोग इस गाने को

सुमन कल्याणपुर ने अपने इस संगीत सफर में हर महान कलाकार के साथ आवाज मिलाई, लेकिन जो कि मोहम्मद रफी लता जी के साथ गाया करते थे, कुछ अनबन के कारण वे लता जी से कुछ दूर हो गए। सुमन कल्याणपुर के साथ उन्होंने कुछ 150 डुएट गाए। एक बेहद ही खूबसूरत गाना जो कि आज भी लोग याद करते हैं, उन्होंने प्लेबैक दिया था विजयन तिमाला के लिए फिल्म रहे 1966 के सूरज। राजेंद्र कुमार इस फिल्म में विजयन तिमाला के ऑपोजिट मौजूद रहे। संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी और गाने को लिखा हसरत जयपुरी ने।

सुमन कल्याणपुर ने अपने खूबसूरत संगीत सफर में, जो कि कुछ तीन दशकों का रहा, कुछ 3,500 गाने दिए और उन 3,500 गीतों में कुछ 750 गाने रहे हिंदी सिनेमा के लिए और उन्होंने अनेकों भाषाओं में भी अपने आवाज के जादू को फिरौती

सुमन कल्याणपुर को उनके इस खूबसूरत योगदान के लिए अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन साल 2023 को कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए सुमन कल्याणपुर को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया।

0: अकेली न जा।
1: सुमन कल्याणपुर की आवाज एक अनोखी आवाज रही, लेकिन उनकी आवाज ही दुर्भाग्यवश उनकी जिंदगी के अजीबो गरीब कहानी की वजह भी रही। सुमन कल्याणपुर जी की आवाज एकदम लता जी की आवाज से मिलती जुलती थी और सुमन कल्याणपुर के पीछे कई षड्यंत्र भी रचे गए जिससे कि उन्हें संगीत के मंच से दूर किया जाए।

सुमन कल्याणपुर ने अपनी पहचान केवल एक मधुर गायिका के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे कलाकार के रूप में भी रही जिससे अपार प्रतिभा के बावजूद विनम्रता और आत्मसम्मान को बनाए रखा।

आवाज की तुलना अक्सर लता जी के आवाज से की जाती थी, किंतु सुमन कल्याणपुर ने हमेशा अपनी अलग पहचान और शैली को महत्व दिया। उन्होंने स्वयं ये भी कहा कि उन्हें किसी की नकल करने की नहीं, बल्कि हमेशा अपने स्वाभाविक गायकी को उन्होंने अपनाया। सुमन जी को संगीत के इस मंच से हटाने की कई कोशिश जारी रही। एक ऐसा समय भी आया कि सुमन जी इतनी शोहरत, इतने हुनर होने के बावजूद अपने जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने गुमनामी के अंधेरे में बिता दिया, इस संगीत के दुनिया से दूर हो गई।

0: सुमन कल्याणपुर एक अद्भुत कलाकार। वे केवल एक गायिका नहीं थे बल्कि भारतीय संगीत के उस मधुर परंपरा की प्रतिनिधि थे जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देगी। उनकी आवाज एक न भूलने वाली आवाज है। हमेशा उन्हें हम दिल से याद करेंगे। उनके इस खूबसूरत योगदान के लिए बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा इस भारत की बेटी को उनकी अंतिम विदाई दी गई और विदाई के समय तीन दौर के बंदूक सलामी भी दी गई। यह विदाई केवल एक महान गायिका की नहीं बल्कि भारतीय संगीत के स्वर्णीय युग की एक अमूल्य धरोहर की थी। सुमन कल्याणपुर को उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: एक तो मैंने लिख ली है, वो बम्बई से डालूंगा, फिर लिखूंगा जहाज पर से, फिर एडन से, फिर मार्शल से, और फिर लंदन पहुंचकर।
2: मुझे फूल तो नहीं चाहिए।
1: कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने इसने जिंदगी में सिर्फ देवयानी को चाहा है और कोई लड़की कभी उसके जिंदगी में नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारे पास रहूं या न रहूं देवयानी, तुम्हारी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। देवयानी एक बार फिर तो कहो, रहें न रहें हम, मैं क्या करेंगे, बन के कली बन के सबा आगे वफा में।

0: मैंने सोचा था हमारी ये जुदाई भी थोड़े ही समय के लिए है।
1: तुमने ठीक ही समझा था उसकी चिट्ठी से, लेकिन मैं कुछ नहीं समझ सका।
0: मैं माँ हूँ ना, सुपर्णा के दिल की बात मैं ही समझ सकती हूँ।
1: हाँ
0: मनीष,

0: रविवार 14 जून 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समुद्र विज्ञानी और पर्यावरण इंजीनियर वासेन कोपे मुतु के अनुसार अगले महीने से शुरू होने वाला एल नीनो लगभग 8 महीने तक मॉरिशस के मौसम को अप्रत्याशित बना सकता है। इसके कारण सूखा, भारी बारिश और कृषि, समुद्र और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट आ सकता है, जिससे निपटने के लिए उन्होंने समय रहते तैयारी करने पर दिया है जोर। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताहांत देश भर में कई रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। फिनिक्स, फ्लैक और मोका में बड़ी संख्या में लोगों ने किया है रक्तदान। यह एक छोटा परंतु जीवन बचाने वाला कदम है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 710 हो गई है विदेशी स्तर पर, और अब तक इस बीमारी से 149 लोगों की हो गई है मौत, जबकि करीब 300 मरीज अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में उपचाराधीन हैं। और ट्रंप द्वारा रविवार को हस्ताक्षर किए गए अनुमान के बावजूद ईरान का कहना है कि अमेरिकी समझौते पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो बड़ी खबर है। एक महीने से कुछ अधिक समय में एल नीनो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना शुरू कर देगा, जो 8 महीने तक चल सकता है और इसका असर मॉरिशस पर भी पड़ेगा। समुद्र विज्ञानी और पर्यावरण इंजीनियर वासेन कोपे मुतु के अनुसार इस अवधि के दौरान स्थानीय मौसम अप्रत्याशित हो सकता है, जिसमें लंबे समय तक सूखा, अत्यधिक भारी बारिश और कृषि, समुद्र व खाद्य सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव शामिल है। उन्होंने कहा कि इस घटना का सामना करने की दिशा में हमें अपने संसाधनों को तैयार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही यह दूर की घटना लगे परंतु यह हमारे दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: प्रशांत महासागर में होने वाले उतार चढ़ाव का मॉरिशस की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमारा द्वीप एल नीनो घटना से प्रभावित हो सकता है। समुद्र वैज्ञानिक वासेन कोपे मुतु के अनुसार प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की इस घटना का प्रभाव जुलाई से शुरू होकर लगभग 8 महीनों तक बना रह सकता है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। जुलाई अगस्त तक इसका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ेगा। संभव है कि गर्मी के पूरे सीजन में बारिश ही न हो। मॉरिशस में इस जलवायु परिवर्तन के दौर का पर्यावरण, कृषि और समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी के कारण कोरल्स प्रभावित होंगे, तापमान ज्यादा होगा, सूखा होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकता है।
2: La sécheresse importante qui va être là va créer beaucoup d'impact sur notre sécurité alimentaire.
1: समुद्र वैज्ञानिक का कहना है कि इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गर्मी और नमी एक साथ होगी तो हमारा देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।
2: 45-50 डिग्री, donc l'effet qu'on appelle wet bulb. Donc notre pays sera grandement affecté.
1: वासेन कोपे मुतु के अनुसार एल नीनो कोई असाधारण या नई घटना नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता और तीव्रता में लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इस पर पहले से कहीं अधिक सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता है।
2: Tous les services météorologiques internationaux sont en train de mettre en garde.
1: अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा हर जगह इसकी चेतावनी दी जा चुकी है। इस बार एल नीनो के कारण एक ही समय पर कई प्राकृतिक प्रकोप एक साथ होंगे, व्यवस्था करनी चाहिए। एल नीनो हमें याद दिलाता है कि हमारा छोटा टापू देश भी वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के बड़े प्रभावों से अछूता नहीं। इसकी अवधि लगभग 8 महीने तक रह सकती है, इसलिए इसके संभावित प्रभावों का समय रहते आकलन करने और उससे निपटने के लिए निरंतर निगरानी बेहद आवश्यक है।
0: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गैस गीजर से होने वाले हादसों और कार्बन मोनोक्साइड के जहर का खतरा बढ़ जाता है। गलत तरीके से इंस्टॉलेशन, वेंटिलेशन की कमी और पाइपों का सही रखरखाव न होना, बाथरूम जैसे बंद स्थानों में पलक झपकते ही कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सिंचा मोटू की रिपोर्ट पर विवरण अदिति अवतार का।
3: साल की शुरुआत से अब तक देश में गैस वाटर हीटर के कारण कार्बन मोनोक्साइड इंटॉक्सिकेशन के 6 मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एक प्रमुख गलती है उपकरण को बाथरूम के अंदर स्थापित करना। Station fire officer Giovanni Rezana कहते हैं,
4: l'installation lui-même lui faisait faire par une personne compétente dans le domaine, c'est-à-dire un technicien.
3: इस उपकरण का इंस्टॉलेशन एक प्रशिक्षित टेक्नीशियन द्वारा किया जाना चाहिए। बाथरूम के अंदर कम से कम एक ओपनिंग और उचित वेंटिलेशन होना आवश्यक है, चाहे वो खिड़की के माध्यम से हो या दरवाजे के। कुछ लोग अपार्टमेंट्स में या ऊंची मंजिलों पर रहते हैं, ऐसी जगहों पर खिड़की लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में एक मैकेनिकल एक्सट्रैक्टर स्थापित करना चाहिए जो वायु को अंदर से बाहर भेजे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये उपकरण घर के बाहर लगवाना बेहतर समझा है। आंसोफी मारीजान कहती है, हमने हीटर बाहर लगवाया है ताकि जब गैस जले तो धुआं बाहर ही रहे और हम सुरक्षित तरीके से स्नान कर सकें। कुछ दुकानें अब ज्यादा सुरक्षा की सुविधाओं वाले नए गैस वाटर हीटर के मॉडल प्रस्तावित कर रही हैं। व्यापारी शबनम बंधु कहती है, हमारे पास एक नया मॉडल है जिसमें मोनोक्साइड डिटेक्टर स्थापित हैं। इससे अगर मोनोक्साइड गैस की मात्रा बढ़े तो उपकरण अपने आप ही सप्लाई बंद कर देता है। कार्बन मोनोक्साइड एक ऐसा गैस है जिसका कोई रंग या गंध नहीं है और इसे ज्यादा सूंघने से चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी भी। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये जानना आवश्यक है। जोवानी रेजाना कहते हैं, सबसे पहले बाथरूम खोलकर व्यक्ति को घर के बाहर खुली हवा में लाना चाहिए, उसे वेंटिलेशन मिलना चाहिए और हमें 114 या 115 पर फोन करना चाहिए। वाटर हीटर की लौ के रंग पर भी नजर रखनी चाहिए। अगर वो नीली है तो ठीक है, अगर पीली या ऑरेंज है तो ये खराबी का संकेत है। इसलिए हर साल किसी योग्य टेक्नीशियन द्वारा गैस वाटर हीटर का निरीक्षण और मेंटेनेंस करवाने की सलाह दी जाती है।
0: डिक्रिमिनलाइज करें या फिर लीगलाइज करें या फिर नहीं, कैनाबिस को लेकर बहस छिड़ी हुई है। क्या यह वास्तव में अन्य नशीले पदार्थों की ओर ले जाने वाली एक शुरुआती ड्रग है जैसा कि कुछ लोगों का दावा है, या फिर उन लोगों की मदद करने का समाधान है जो हार्ड ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स की लत के दलदल में डूब चुके हैं। जो लोग पहले ही इस नर्क को झेल चुके हैं वे इस पर अपना नजरिया समझा रही है। अंजू राम गुलामा की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
3: गांजे से लेकर सिंथेटिक ड्रग तक शरण ने हर तरह के नशीले पदार्थों का सेवन किया है, लेकिन आज 8 साल हो चुके हैं जब से 46 वर्षीय ये व्यक्ति पूरी तरह से नशे से मुक्त है। उसे ड्रग्स की दलदल से निकालने में कई अन्यों के साथ जोजे भी शामिल रहे। वो खुद पिछले 40 सालों से नशे से दूर हैं और उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित किया है। मैंने कई लोगों की मदद की है, मैं समाधान देता हूँ जो एक मजबूत मेडिकल उपचार से गुजरता है, लेकिन साथ ही मनोवैज्ञानिक समर्थन जरूरी होता है। व्यक्ति को ट्रीटमेंट देकर छोड़ देना उचित नहीं होता। आज के तेज पदार्थों के कारण हमें नियमित फॉलोअप करना जरूरी होता है। सामने आने वाले सवालों में ये मुद्दा भी है कि क्या उसके द्वारा प्रस्तावित थेरेपी में गांजे का इस्तेमाल शामिल है। जोजे कहते हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि सिंथेटिक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष के लिए गांजे का वैधीकरण आवश्यक है, लेकिन इस पर मेरा विचार अलग है, क्योंकि ड्रग्स का नशा करने वाले बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी कभी थोड़े गांजे के साथ शुरू किया था। असल में यही लत की शुरुआत है, क्योंकि थोड़े नशे के बाद लोग ज्यादा की तलाश करने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गांजा एक गेटवे ड्रग की तरह है, यानी उसी से शुरू करके लोग ज्यादा खतरनाक मादक द्रव्यों के सेवन तक पहुंचते हैं, लेकिन इस मान्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई है। गेटवे ड्रग की थियोरी को लेकर ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रोग्राम्स की तरफ से 2018 में प्रकाशित 23 अध्ययनों के अनुसार गांजे और तेज मादक पदार्थों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया जाता। कलेक्टिव का सर्वे के अनुसार समाधान स्पष्ट रूप से गांजे के लीगलाइजेशन में निहित है, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है और किस संरचना को प्राथमिकता देनी है ये अभी देखना बाकी है। खुद ड्रग अधिक रह चुके इमानुएल के पास कुछ प्रस्ताव हैं। वे कहते हैं, मेरे हिसाब से बेहतर होता कि हर एक के यहाँ गांजे का एक पौधा होता, और दूसरी तरफ से मैं सरकार से मांग करूंगा कि गांजे को लेकर सभी नियंत्रण प्रणालियां लागू की जाए। इसका कंट्रोल एएमबी की तरह ही हो सकता है, जो लहसुन प्याज आदि का नियंत्रण करता है। स्थानीय कलाकार स्काई टूबी के शब्द भी दिल से निकली पुकार की तरह है, एक मदद की गुहार। हमारे आसपास के लोग हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। ड्रग्स के माहौल में रहकर उससे बचे रहना बहुत मुश्किल है। मेरी मांग यही है, मानसिकता बदल कर हमारी मदद कीजिए। सफर में कई रास्ते हैं तो कई दृष्टिकोण भी, सबका केंद्र एक है, ड्रग्स की दलदल और एक अनसुलझा सवाल, इस नर्क से कैसे छुटकारा पाया जाए।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि आज 14 जून को मनाए जा रहे विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह देश भर में कई रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। फिनिक्स, फ्लैक और मोका में बड़ी संख्या में मॉरिशनों ने इस नेक काम में हिस्सा लिया। यह एक सरल परंतु बेहद महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अस्पतालों में रक्त की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, विशेष रूप से कुछ दुर्लभ ब्लड ग्रुप्स और प्लेटलेट्स डोनेशन के लिए। सगा ओनो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
3: कई लोगों ने दूसरों की मदद के उत्साह में अपने दिन के कुछ मिनट रक्तदान के लिए समर्पित किए। विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में इस सप्ताहांत देश के कई इलाकों में रक्तदान अभियान आयोजित किए गए।
5: Quand nous donnons du sang, ça aide nous aussi, du sang libre et renouvelé.
6: Bien si une petite douleur, c'est ce qu'on peut piquer, mais pense un petit peu plus grand, plus large que un au bout ou même dans bonne santé. Et déjà, on peut du sang pour servir, pour sauver la vie et notre bonne aussi.
3: देश के स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन लगभग 140 पाइन खून की आवश्यकता पड़ती है। जमा किए जाने वाला खून किस समय किस मरीज या आम व्यक्ति के काम आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। कभी दुर्घटना में घायल तो कभी सर्जरी करवा रहे मरीज या तो नियमित ट्रांसफ्यूजन करवाने वाले पीड़ित। सभी ब्लड ग्रुप्स की मांगे रहती हैं, लेकिन विशेष रूप से ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव की ज्यादा मांगे होती हैं, जिनका स्टॉक अक्सर कम रहता है। ब्लड बैंक के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नलाया कहते हैं, सर्दियों के दौरान लोग घर पर रहते हैं और हमें तभी बड़े वृहद अभियान चलाने चाहिए। इन दिनों ही हमें भीड़ जमा करके जनता की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान की मदद करता है। हमें अभी ओ नेगेटिव तथा ग्रुप ए की जरूरत ज्यादा है। हमें प्लेटलेट्स तैयार करने के लिए ताजे खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स 5 दिन से ज्यादा नहीं रखे जा सकते। जहां देश के अस्पतालों में खून की मांगे हमेशा रहती हैं, वहीं अधिकारीगण मॉरिशन जनता से ब्लड डोनर्स बनकर दूसरों की मदद के लिए सक्रिय बनने की मांग करते हैं।
0: तेजी से बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के सामने मॉरिशस के कपड़ा क्षेत्र की SME नई संतुलन की तलाश कर रही है। आर्थिक दबावों, जरूरी बदलावों और प्रतिस्पर्धा बने रहने की मजबूरी के बीच ये कंपनियां निर्यात बाजार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए विशेषज्ञता, लचीलेपन और विशिष्ट बाजारों पर दांव लगा रही है। इस वर्ष लकाज आ एनजीओ अपने अस्तित्व के 40 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसी वर्षगांठ को मनाने के लिए और ड्रग्स की बुराइयों का सामना कर रहे परिवारों के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डालने के वास्ते साल भर कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को एक गिरजाघर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं साल 2026 के विश्व कप प्रतियोगिता के बारे में, जहां पर ब्राजील और मोरक्को के बीच हुआ मुकाबला इस रविवार की सुबह न्यूयॉर्क में अपनी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा। साल 2026 विश्व कप का यह पहला बड़ा और हाई प्रोफाइल मैच था, जिसने शुरुआत में ही रोमांच का एहसास करा दिया और इस दौरान दोनों टीमों के बीच एक बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसकी रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ी। अरविंद बिसेसो की रिपोर्ट।
7: ग्रुप सी वाला कांटेदार मैच ब्राजील और मोरक्को के बीच फुटबॉल के नजरिए से देखें तो बहुत बेहतरीन खेल देखने को मिले। मोरक्को की टीम ज्यादा आक्रामक रही। द एटलास लायंस की दमदार शुरुआत, जाज के पास पर इस्माइला साइबारी गोलकीपर अलिसन को लॉब करके गोल स्कोर करता है। ब्राजील का रासिलेसाओ तुरंत उल्टा प्रहार करता है, विनीशियस जूनियर का इक्वलाइजिंग गोल। सेकंड हाफ में दोनों टीमों ने खेल का रफ्तार बढ़ाया, मोरक्को को काफी अच्छे मौके मिले, ब्राजील को भी, पर एक भी गोल नहीं बना। हिसाब बराबर। इस ग्रुप के दो फेवरेट के बीच स्कोर 1-1। इसी ग्रुप में स्कॉटलैंड ने आईजी को 1-0 से हराया।
8: I think in the end you would say a draw is a fair result.
0: और आज रात साल 2026 विश्व कप में हाई लेवल के मुकाबलों की एक श्रृंखला के साथ रोमांच और भी बढ़ने वाला है। दिग्गज टीमों और उलटफेर करने का दम रखने वाले बाहरी देशों के बीच अमरीकी मैदानों पर आज की शाम एक शानदार और रोमांचक तथा मनोरंजक खेल का वादा करती है। ज्यादा विस्तार अरविंद बी सर के साथ।
7: वर्ल्ड कप 2026 का पहला सप्ताहांत जिसमें ग्रुप ई की बारी है, यहां पर जर्मनी के द नेशनल मैनचेस्टर मैदान में उतरेगी। उसके सामने है कुरासाओ। ह्यूस्टन स्टेडियम में ये मैच 9 बजे खेला जाएगा। 2018 और 2022 में जर्मनी की टीम ग्रुप स्टेज से ही रफा दफा हो गई थी। इस बार जूलियन नागेल्समान के

0: खिलाड़ी ऐसी गलती नहीं करना चाहते, मैच जीतकर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। सामने होगी कैरेबियन आइलैंड की टीम कुरासाओ, जो पहली बार विश्व मंच पर कदम रखेगी। फिर 12 बजे मिडनाइट किक ऑफ ग्रुप ई में नेदरलैंड्स का सामना जापान से होगा डलास में। नेदरलैंड्स के लिए ओरेंज 3 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जा पाए हैं, पर वर्ल्ड टाइटल अभी तक हाथ नहीं लगा है। इस बार स्क्वाड में वर्जिल वान डाइक जैसा अनुभवी खिलाड़ी है, तो ग्रेवेनबर्ग को दी गाकपो के जोश भी है। जापान को अब वर्ल्ड कप का छोटा बच्चा नहीं मानते, पिछले वर्ल्ड कप में जर्मनी और स्पेन को सबक सिखाया था। और कल सुबह 3 बजे आइवरी कोस्ट का सामना इक्वाटोर से होगा फिलाडेल्फिया में। 12 साल बाद आइवरी कोस्ट के हाथी वर्ल्ड कप में वापस आ रहे हैं, पर उनके नामी खिलाड़ी बहुत हैं। टक्कर है एक ऐसी टीम से जो सॉलिड है, खासकर डिफेंस में। पिछले 19 मैचों में इस टीम की हार नहीं हुई है। दक्षिण अमरीकी क्वालिफिकेशन में इक्वाटोर की टीम दूसरे स्थान पर आई थी, अर्जेंटीना से पीछे पर ब्राजील से ऊपर। इन मैचों को आप देख पाएंगे स्पोर्ट्स 11 पर। मैच से पहले स्पेशल प्लाटू ऑन रूट वेर न्यूयॉर्क 9:30।
1: कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार मॉरिशस के दौरे पर आई सेशल्स की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोट ने पिछले सप्ताह लातूकेनिक स्थित एनटीसी डिपो का दौरा किया। मॉरिशस के आंतरिक परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के साथ उन्होंने जनवरी में अपनी पिछली यात्रा के बाद से इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हुई प्रगति का जायजा लिया। ये यात्रा टिकाऊ गतिशीलता के क्षेत्र में मॉरिशस के अनुभवों से प्रेरणा लेने की सेशेल्स की इच्छा का हिस्सा है। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: अपने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर पहले से ही विचार कर रहा सेशल्स गणराज्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में मॉरिशस द्वारा की गई प्रगति पर करीब से नजर रख रहा है। ये तकनीकी दौरा दोनों देशों के बीच विशेषज्ञता साझा करने और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। वेरोनिक लापोट ने कहा, हम मूल ढांचे पर काम कर रहे हैं, हम आपके अनुभवों और चुनौतियों से सीखेंगे, हम ऑनलाइन सीखते रहते हैं। एनटीसी के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में सेवा में मौजूद बुनियादी ढांचा 63 इलेक्ट्रिक बसों तक को चार्ज करने की अनुमति देता है। कई चार्जिंग स्टेशन पहले से ही काम कर रहे हैं, जबकि बेड़े और नेटवर्क के क्रमिक विस्तार के सहयोग के लिए अन्य स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। इस परिवर्तन की लागत के सवाल के साथ साथ मॉरिशस के यात्रियों और बस कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर भी चर्चा की गई। अंदरूनी परिवहन मंत्री उस्मान माउमेद बताते हैं, डीजल के दाम बढ़ने पर बस कंपनियों ने हमें पत्र लिखा और बस टिकटों पर फिर से गौर करने का आग्रह किया। ये सरकार का एक फैसला होगा। चूंकि मॉरिशस अधिक हरित गतिशीलता की ओर अपना परिवर्तन जारी रख रहा है, मंत्री उस्मान माउमेद याद दिलाते हैं कि अकेले एनटीसी की बसें सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के कुल CO2 उत्सर्जन का 31.6% हिस्सा है। उनके अनुसार ये एक ऐसा आंकड़ा है जो बसों के बेड़े के विद्युतीकरण में तेजी लाने के महत्व को दर्शाता है।
1: विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर युद्ध रोकने के समझौते पर रविवार को ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। तेहरान ने इस समय सीमा पर असहमति जताई और उसका कहना है कि आने वाले दिनों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। उधर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर हैं, जहां उनके आगमन को लेकर भारतीय समुदाय में भारी उत्साह है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दूसरी ओर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 710 हो गई है।

0: अंत में मौसम का हाल।
1: पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह दक्षिणी और पूर्वी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद भी ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 18 से 20 और अधिकतम 24 से 26, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 और अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। आइए शोक समाचार सुनते हैं। लाक्रोइ गली फॉरेस्ट साइट क्यूबिप में, लाक्रोइ गली फॉरेस्ट साइट क्यूबिप में 85 साल की 85 इयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी नसीसा करिम्बकस, मिसिज बीबी नसीसा करिम्बकस, जिन्हें सब लोग नसीसा के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज रात के सात बजे उन्हीं के मकान लाक्रोइ गली फॉरेस्ट साइट क्यूबिप से निकाल कर दफनाने के लिए बिगाहा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 7। प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासे ट्रियोले में, प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासे ट्रियोले में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जनेगी मुतु, पैदाशी नाम पम्बियन और जिन्हें सब लोग रागिनी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके पति श्री रामास्वामी मुतु के घर प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा कासे ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। कॉम्बानन ग्रांबोआ में 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश्वरनाथ सिंह सुंदर, जिन्हें सब लोग सचिन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी मां श्रीमती लीलावती सुंदर के घर कॉम्बानन ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। रॉबर्ट केनेडी स्ट्रीट रुन्यो मुरेल पेटी राफ्रेमे 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री भोरद्वाज सुकन, जिन्हें सब लोग लाल सुकन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती निशी सुकन के घर रॉबर्ट केनेडी स्ट्रीट रुन्यो मुरेल पेटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। एस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड के श्री विनय रघुबाव, जिन्हें सब लोग विकास के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर एस्टोरिया रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआरूज गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रॉल रोड रोश्ते में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती परमावती पुरंग, पैदाशी नाम दुबरी और जिन्हें सब लोग परमावती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री तुलसी सीतल पुरंग के घर रॉयल रोड रोश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांगोप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM।

0: road l'avant tue mais la road l'avant tue mais tira tiralis sala qui 43 years old qui श्रीमती रमेश्वरी सीतल, श्रीमती रमेश्वरी सीतल पैदाशी नाम जोहल और जिन्हें सब लोग मनीषा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर की दो बजे उनकी पति श्री मदन सीतल के घर रालरू लावोंचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडुमास्का की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। लापोत प्रोविडेंस पोज दे फ्लैक में नवासी साल के 89 years old के श्री हरि सुकन जिन्हें सब लोग गंतो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उनके बेटे श्री नितेश सुकन के घर लापोत प्रोविडेंस पुस दे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 2 PM। रंपल मोआ मंडल बीएमए 59 साल की 59 years old की श्री गोपाल श्यामलोल जिन्हें सब लोग सूरज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सपहर के तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती देवयानी श्यामलोल के घर रंपलमोआ मोंडालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमायों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 4 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
2: आइए जानते हैं MBC प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
3: You're listening to RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: Neiso. जय नमस्कार प्रणाम गुड आफ्टरनून आदाब आप सभी को और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर हम फिर से वापस आए हैं। मैं हूँ देवीना माइक पर और प्रोग्राम है नई सोच अभी से लेकर 7 बजे तक। आज के इस 8 घंटे के सफर में खूबसूरत सफर में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है यानी कि दर्शन यानी कि फिलोसोफी और आपके सपने। वैसे दोस्तों जीवन केवल सांसों का नाम नहीं है, जीवन विचारों का नाम है, नज़रिए का नाम है और यही नज़रिया यानी कि दर्शन हमारे सपनों को दिशा देता है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए यही सोच और सही दर्शन का होना आवश्यक है। तो बस अच्छे सपने देखिए और उनको पूरा करने की भी कोशिश कीजिए, यानी कि फिलोसोफी और सपने बहुत ही आवश्यक हैं। तो ये अगला गाना आप सबों के नाम फिल्म है हनीमून किशोरदा आशा भोसले की आवाज़ों में।

0: Continuous music. RM3.
1: Nee so. जी हाँ, जीवन है एक सपना, एक सुंदर सपना। और दर्शन का अर्थ यानी कि फिलोसॉफी का अर्थ केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। दर्शन वह दृष्टि है, वह नज़रिया है जिससे हम संसार को देखते हैं। कोई व्यक्ति अगर प्रॉब्लम में हो तो उसे बाधा मानता है, तो कोई उसे अवसर समझता है। यही कंपैरिजन है इन दोनों व्यक्तियों में। स्वामी विवेकानंद का एक प्रेरणादायक वचन ये है, उठो जागो और तब तक मत रोको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और इसी पॉजिटिव दर्शन से हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलती है। तो बस सपना जहाँ हो वहाँ हकीकत में बदलने की कोशिश भी करनी चाहिए।

0: You're listening RM3 Radio. Radio. Radio.
1: नहीं सो। जहां दोस्तों एक मूर्तिकार से पूछा गया कि वह पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना देता है, उसने मुस्कुराकर कहा, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के भीतर होती है जनाब, मैं केवल अनावश्यक हिस्सों को हटा देता हूँ। वैसे दोस्तों हमारे सपने भी हमारे भीतर मौजूद हैं, हमें केवल डर, संदेह और निगेटिविटी को हटाना होता है।

जहाँ दोस्तों जीवन में सपने देखना कभी मत छोड़िए, लेकिन उन सपनों को सही दिशा देने के लिए अपने विचारों को भी सुंदर बनाइए। बड़ा सपना देखने वाले ही बड़ा इतिहास रचते हैं। इसी पॉजिटिव संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप अपने आप पर विश्वास रखिएगा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से मिलेंगे 7 बजे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ। इस गाने को हम गुनगुनाते हैं 7 बजे तक। सो बस आप सबों को फिर से नमस्कार।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: आइए जानते हैं MBC प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 4333135 या 4332871 या 4333145 या 4332905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: You're listening RM3 Radio.

उनके पापा के लिए ये है फ्रॉम बेटा प्रीतम डॉटर इन लॉ पूनम ग्रैंड डॉटर दिव्यांशी और चर्वी और सभी जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन की टीम की ओर से और सभी लिसनर्स की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: continuous music.
1: राठी के 7:08 हुए हैं, संडे है 14 जून 2026। सो सवेरे दिन भर हम आपके साथ थे और रात को भी हम आपका साथ देने आ गए हैं। और दिन भर हमने कुछ पुराने गाने चलाए, कुछ 60s 70s 80s 90s के गाने। अभी हम 80s के ऊपर के गाने चलाने वाले हैं, 90s भी और 2000 के गाने भी। और आप लोग हमारे दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। और आप सभी को एक प्यारा गुड इवनिंग। और देवीना हूँ माइक पर फिर से आपके धड़कनों का साउंड ट्रैक लेकर हाजिर हुई हूँ। और स्वागत करते हैं आप सभी का वार्म वेलकम ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, आपका मनपसंद रेडियो चैनल, और इस खूबसूरत इवनिंग शो में दिलों की आवाज जो चलने वाला है 9 बजे तक। दोस्तों, दिन भर के भाग दौड़ और कुछ लोग नौकरी पर गए थे, कुछ लोग घर पर थे, कुछ लोग ट्रैफिक में का प्रेशर उन पर था, और साथ में रूटीन की रेस को थोड़ी देर के लिए साथ में रखिए, क्योंकि अब वक्त है दिल को हल्का करने का, मुस्कुराने का और संगीत के साथ एक खूबसूरत सफ़र पर निकलने का। तो याद रखिए, जहां अल्फाज कम पड़ जाते हैं वहां गाने दिल की ज़ुबान बन जाते हैं। तो बस आज रात भी हम बात करेंगे मोहब्बत की, दोस्ती की, यादों की और ज़िंदगी के उन हसीन लम्हों की जो दिल के करीब होते हैं। तो पहला जो गाना है अभी के लिए, नवीन भाई ने फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा हम भूले नहीं कि आप रात को भी काम करेंगी। तो बस एक बहुत प्यारा सा गाना उन्होंने मांग की है, फिल्म है हम तो चले परदेस, और आवाज़ें होंगी आशा भोसले जी की साथ में शब्बीर कुमार साहब की। सो बस इस गाने को एंजॉय कीजिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। नवीन भाई, ये रहा आपके लिए।

0: RM3 Radio. Radio.
1: क्या बात है, 7:30 हुए हैं, संडे की रात है और ऐसे में कहते हैं ना कि गाने सच में वक्त को रोकने की ताकत रखते हैं, आप मानेंगे ना। दूसरी जिंदगी भी FM सिग्नल की तरह है, कभी फ्रीक्वेंसी क्लियर होती है, कभी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, लेकिन जब हौसला स्ट्रांग हो तो कनेक्शन कभी टूटता नहीं। बस हमारा और आपका कनेक्शन है म्यूजिक से, गानों से और रेडियो से। सो अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। अब हेलो जी।

हेलो स्वेनल, और आप हमेशा की तरह जुड़े रहते हैं हमारे साथ। तो रिक्वेस्ट मूवी प्यार इश्क मोहब्बत से है, फिल्म है और गाना है जब तुझे मैंने देखा नहीं था। हाँ जी, तो भाई श्रवण के लिए भाभी कृति, अभिनव, किया, नव्या और तिलक परिवार के लिए, ऑल्सो टू आंटी श्याम सरन लिसनिंग टू यू लिसनिंग टू अस फ्रॉम स्विट्जरलैंड, एंड ऑल्सो गोजस हमारे जो कॉलीग हैं आरजी हंसिनी के लिए। सो बस इस गाने को एंजॉय कीजिए, और आप तो जानते ही हैं 4028070 पर कॉल कीजिएगा, 4200 साथ ही मैसेजेस के लिए 5250 6200 5200 6200

0: RM3 Radio. Radio.
1: जा हमेशा प्यार ही प्यार बस और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आपके लिए ढेर सारा प्यार हम लेकर आए हैं। तो माइक पर है दीवीना आपका साथ देने के लिए। और वैसे कहते हैं ना, खुश रहने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी इम्परफेक्ट लम्हे ही सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। बस जो भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। और आप हमेशा पॉजिटिव रहे, अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो बस इंतज़ार कीजिए, अच्छा समय आएगा ही आएगा। तो अगले गाने की ओर डेडिकेशन रिक्वेस्ट। हेलो गुलशन जी, हेलो जी, मैं हूँ दीपिना आपका साथ देने के लिए। तो सॉन्ग रिक्वेस्ट सॉन्ग है डरार मूवी का, और हम याद कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब थे इसमें, अरबाज खान साथ में, द ब्यूटीफुल जूही चावला। और ये जो गाना आपने मांगा है कुमार सानू साहब की आवाज़ में, अलका याग्निक की आवाज़ भी, और ये गाना जाएगा आपकी मम प्रभा के लिए, सिस्टर हैं दीक्षिता, आयशा और पूरे भोला परिवार के लिए।

जहाँ रात के 7:45 हुए हैं। अगर आप अपने दिल की आवाज को एक गाने में बयान कर सकते हो तो वो कौन सा गाना होगा? हमें मैसेज भेजिए या फिर कॉल कीजिए और बताइए, हम आपके पसंदीदा गीत भी बजाएंगे और आपके प्यारे मैसेजेस भी शेयर करने वाले हैं। और वैसे यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम बजाते हैं 80s, 90s और मिलेनियम के गाने, मगर कुछ कुछ जो है एक्सेप्शन भी करते हैं, क्योंकि हमारे लिसनर्स इतने प्यारे प्यारे हैं और दिन में उन्होंने फ़ोन किया, बातें की, जैसे साजिद जी रोजिल से हैं और वे कह रहे हैं दिन में भी हमसे बात की, अभी भी बात की, क्योंकि उन्हें हमारा जो चैनल है, हमारे जो प्रोग्राम है, अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। और वे टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी छोटी सी बात लता जी की आवाज़ में, तो ऑफ कोर्स चला देंगे आपके लिए। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों की जो रातें हैं अच्छी तरह से बीत रही होगी। कुछ लोग टीवी देख रहे हैं और साथ ही रेडियो भी सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हमें पता है क्या हाल होता है, क्योंकि पहले हम भी ऐसा हुआ किया करते थे, कभी कभी दौड़ते थे टीवी के सामने, कभी कभी रेडियो सुनते थे, बस अलग ही मज़ा होता है ना। तो ये गाना आपके लिए साजिद जी।

जी हाँ, रात का समय है और इसी में हल्की सी ठंडक है और रेडियो पर बज रहा हो आपका फेवरेट गाना, तो क्या चाहिए और। वैसे आप क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग हमसे बातें कर रहे हैं, कुछ लोग बिजी होंगे। और इस ठंड में वैसे आजकल रात्रि को एक बार कंबल ओढ़ लो तो बिस्तर या सोफे से उठना कितना मुश्किल होता है ना। तो बस आप सभी को बों कुहाज और उन मम्मीज को भी बों कुहाज जो अभी तक रसोई में होंगी या बर्तन मांज रही होंगी। और अगर आप लोग आने वाला जो वीक है इसके लिए तैयारियां कर रही है, बच्चों की के खाने के लिए, बच्चों के कपड़े, पतिदेव के कपड़े, और पतिदेव भी आप लोग अपनी वाइफ की मदद कीजिएगा ना। तो बस जितने लोग बिजी होंगे तो उनको बों कुराज, और स्पेशली जो लोग अभी नौकरी पर बाहर हैं। अभी हम तो स्टूडियो में हैं, गर्मा गर्म यहाँ पर खाना मिला हमें, खाना खाया और हम लोग आपका साथ दे रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ठंड में बाहर काम कर रहे हैं, तो आप सभी को ढेर सारा प्यार भेजते हैं, बों कुराज कहते हैं। और ऐसे में एक और गाना डाउन मेमोरी लेन गायत्री जी के लिए, गायत्री जी आपसे बात करके अच्छा लगा। सो डिनर टाइम है, आप खाना खा रही होगी, तो बोन अपेटी, शुभ आहार सभी को जो अभी डिनर ले रहे हैं। सो वे सुनना चाहती हैं, आपके लिए भी एक्सेप्शन है, हम हिंदुस्तानी मूवी का गाना है, नीनी नीली घत्ता, मुकेश साहब आशा भोसले जी की आवाज़ों में। तो ये गाना तमाम लिसनर्स के लिए।

जहां नाम जोड़ना चाहेंगे गायत्री जी की ओर से बहन अमृता का नेहा क्षिति दिव्या सुधीर कमलेश सुधा भाभी मीरा है गिरिशा और मेधा

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जहाँ रात्रि के 8:07 हुए हैं और आप कनेक्टेड हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से प्रोग्राम है दिलों की आवाज और मैं हूँ देवीना और अगले एक घंटे तक हम साथ सजाएंगे सुरों जज्बातों और यादों की महफिल। हर नई शाम हर नई रात एक नई उम्मीद लेकर आती है। कल क्या हुआ उससे ज्यादा जरूरी है कि आज आप किस बात पर मुस्कुराते हैं। एंड आई एम श्योर आप ऐसे प्यारे प्यारे गाने सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे और कितने लोग साथ निभा रहे हैं इस वक्त आप सबों का साथ पाकर हम कितने खुश नसीब हैं यह हम जानते हैं। सो बस अब एक और गाना आप चलाते हैं पोर्टविस के इब्राहिम जी के लिए। वे कह रहे हैं उनका फेवरेट गाना हमेशा की तरह फिल्म है शतरंज, तुम्हें मैं अगर अपना साथी बना लूँ तो क्या होगा, तो आशा जी की आवाज़ में। और ये गाना आपके लिए खास रफ़ी साहब की आवाज़ में भी इब्राहिम जी, और इसमें नाम जोड़ते हैं छोटी दीदी का, छोटी जी ललिता दीदी के लिए और हरीश के लिए भी ये गाना आप सबों के लिए।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: आइए जानते हैं MBC Play पर New World Sports Pack में सब्सक्राइब करने का तरीका. Step 1. सब्सक्राइबर को पहले MBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में. अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल. स्टेप 2. अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस. एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप. अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा. ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी. यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे. और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा. ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन. तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC Play एप्लीकेशन. अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट.

0: स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: RM3 Radio.

जहाँ ये गाना स्पेशली शारदा जी के लिए, सभी सुंदर परिवार के लिए और एम्फ्री फैमिली के नाम, शुक्रिया, आपको भी शुभरात्रि। मैं हूँ देवीना, आपके संग यहाँ पर 9 बजे तक। फिल्म है राजा हिंदुस्तानी।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज
1: जहाँ रात्रि के 8:28 हुए हैं, देखते देखते वो समय कितना भाग रहा है ना। और ऐसे में सर्दी का मौसम जब होता है तो ऐसा लगता है कि कब सवेरा हुआ, कब शाम हुई और कब रात्रि हुई और कब फिर से सवेरा हुआ, पता ही नहीं चलता है ना। तो ऐसे में फूलवंती जी वाकवा से में हैं और वाकवा में वे कह रही हैं मौसम तो सुहाना है मगर बाहर ठंडी ठंडी हवा है और उन्हें तो गर्मी आ रही है। और बहुतों को ऐसा होता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, और वे ये गाना सुनना चाहती हैं, वे ठंडी हवा खाना चाहती हैं। सो साथ में वो खाना भी खा रही थी तो बना पेची फूलवंती जी और उनके पति और सभी बच्चों के लिए। और वे कहती हैं, फूलवंती जी कहती हैं, रेडियो के बिना, हमारे बिना, हमारे सभी आवाज़ के बिना उनका जीवन सुना होता। तो बस जितने लोग रेडियो को अपना साथी मानते हैं आप सभी को कहेंगे थैंक यू सो मच टू बी कनेक्टेड टू अस। और साथ ही हम नाम जोड़ेंगे उमा जी ऑफ क्यू पेपर, वे कह रही हैं लविंग दिस नाइस सिलेक्शन, थैंक यू सो मच उमा जी, लॉट्स ऑफ लव टू यू। और जो गाना फूलवंती जी ने मांगा है आशा जी की आवाज़ में डू बटन मूवी का गाना है।

हरीश जी के लिए बुबासन से हैं, हमेशा साथ देते हैं हरीश जी रोमांटिक मूड में, हमेशा अपने खास अनु के लिए। और इसमें आवाज़ें हैं विनोद राठौर साहब, साथ में अलका याग्निक। और जितने लोग प्यार में डूबे हुए हैं, रोमांटिक मूड में रहते हैं और ऐसी ठंडी रात में किसी की याद आ रही है, तो राम सिस्टर आपके लिए ऑन आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम है दिलों की आवाज़, देवीना के संग।

या चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो, जैसे आप हो ना हमारे लिसनर्स, आप लाजवाब हैं, इसलिए हमारा साथ देते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं और हमको मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए प्यारे प्यारे गाने लाए, प्यारी प्यारी बातें लेकर आए। और कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी की याद, किसी की मुस्कान, किसी की पहली मुलाकात और कभी कभी पूरी कहानी, पूरी ज़िंदगी बन जाता है। आज अगर कोई ऐसा गाना आपने सुना, आपने पसंद की, सो बस हम खुश नसीब हैं जो आपको कुछ प्यार दे सके, आपको खुश कर सके। और ऐसा है

कि हम सभी गाने चला नहीं पाएंगे, बस आपके नाम जुड़ते जाएंगे। जितने लोग पुराने गानों के शौकीन हैं, सदाबहार गानों के शौकीन हैं, उनका नाम है यहाँ पर स्पेशली। ये था हमारी कटोबोन की बीना जी की ओर से चौदहवीं का चांद, और वे कह रही हैं उनको ये गाना बहुत अच्छा लगा लक्ष्मण फैमिली के लिए। साथ में हैं मोहित जी और तया का, रेहाना जी और फिनिक्स बिस्तर पर लेते लेते हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच। और ललिता कुशल जी हैं ठियोले से, बहन सुदेवी के लिए, ज्ञानी के लिए, छोटी दीदी, दीदी प्रभावती, आत्माराम भैया, हरीश भैया, सुखलाल मौसियर, कितने लोग साथ निभा रहे हैं आप सभी के लिए। और अगला गाना जो है ये होगा उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में, साथ में चित्रा। हाँ जी, और ये गाना बहुत लोगों को पसंद ही होगा, और ये होगा फौज साक की उमा जी के ओर से। वे अपनी सहेली बसंती के लिए ये गाना मांग रही हैं, और जितने बसंतियां हैं उनको ये गाना डेडिकेट कर रही हैं, और मिस कर रही हैं अपनी सहेली को। और ऐसे रात में किसी के से बात होती हैं, किसी के लिए गाना मांगते हैं, सुबह सो जाइए। और एम फ्री रेडियो मनोरंजन के सभी लिसनर्स के लिए

जहाँ रात्रि के हो चुके हैं 8:51 और दोस्तों देखते देखते 2 घंटे का ये खूबसूरत सफ़र अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला है। आपके मैसेजेस, आपका प्यार और आपका जो कॉल्स, आपका साथ ही दिनों की आवाज़ की असली ताकत है। थैंक यू सो मच। दिल से याद रखिए, जिंदगी को कल के भरोसे मत छोड़िए। जो खुशी आज मिल सकती है उसे आज ही जी लीजिए। तो जाते जाते आप सबों का नाम लेते हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं। सो बस यहाँ पर हैं, हाय देविना जी, हाय, नमस्ते, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू, व्हाट्स द सिलेक्शन, इट्स अमेजिंग। कुछ आपके मनपसंद गाने हैं, कुछ हमारे सिलेक्शन के, सो प्लीज़ वे एंजॉय करना चाहते हैं। ओम शांति ओम वाला गाना किशोर डा की आवाज़ में, ओके, चला देंगे आपके लिए। ये है भाई महेंद्र फ्रॉम पालमा, और आपको भी शुभ रात्रि। हाँ जी, बहना है, नमस्ते, बुआकुश गुडलैंड से संध्या हूँ। नमस्ते संध्या जी, गाने की मांग आपने की, मगर हम ना चला पाएंगे तो बस इसमें आपका नाम जोड़ देंगे। और पति विनोद के लिए सेजक हैं रायना निर्वैया, और हाँ जी, आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए शुभ रात्रि आपको भी। आज यूजल ज्योति जी हैं शाटो बेनारस से, आशनी रेखा सुरेखा माधव फैमिली के लिए, हमारे लिए भी थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया थैंक यू। और जाते जाते आपको बता देते हैं कि हमारे बाद आप सुन पाएंगे 9 बजे के बाद जो प्रोग्राम चलता है रेडियो मॉरिशस पर, आप यहाँ पर सुन पाएंगे। और फिर से वही जारी रहेगा हमारा जो म्यूजिकल शो कल, और हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले सप्ताह। तो होप कि जो आने वाला सप्ताह है आप सबों के लिए खुशहाल हो, फुल ऑफ एनर्जी हो। जितने लोग काम पर जाएंगे आप सभी को वो खुश, और फिर मिलेंगे तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और दिल की आवाज़ को हमेशा सुनते रहिए। तो मैं हूँ देविना, आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए दिन और नए एहसास के साथ। शुभ रात्रि, लव यू ऑल, बाय बाय।

0: the Logan Killers. This is Radio Marches.
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो गमच धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
3: सब संगतियों की जय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रात के 9 बजे तक और अभी से लेकर रात के 11 बजे तक के पसंदीदा कार्यक्रम भोजपुरी तड़का। और आज है दिमाग की रात, खूब गमत कर अब सर, ढोलका बजाओ अब सर, नाचो अब सर, गाओ अब सर, झूम अब सर। अभी से लेकर रात के 11 बजे रे नंबर वाला थोड़ा पता बना कट जगह दे वो जगह वो सैंक पर सक बजा टेलीफोन करे और अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत सुने। जून के महीना बाद नाचब स गावब स झूमब स तो लोग संगे संगे। और ये पहल का गाना, जी हाँ पहल का गाना है सास बहू तुलसी। सास बहू क्योंकि सास भी कबू बहू थी, है टीवी सीरियल के जाने रह पौके एमसी टीवी पर आवत हजार बह को जमाना में शाम के 6 बज के आधा से 7 बज के आधा ले तो गीतवा सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के सुनने वाले श्रोतालों के नाम सास बहुत तुलसी। चला सुने

संगता लोग हमनी के पूर्वज जन है और लोग भारत के ढेर मना जगह से आ रहे हैं सर तो लोग के बुला रहा कि वो लोग जब मॉरिशस आयन सर तो माटी कोरियन सर तो वो लोग के माटी के नीचे सोना मिली ये खातिर लोग मॉरिशस आ रहा कॉलोनाइजेशन के दौरान थोड़ा याद बना तो वो लोग आ रहे सर लोग के बुला रहा कि माटी मॉरिशस के माटी जब कोरबा तो सोना मिली खातिर वो लोग आ रहा यहाँ पर ही पर जब आइलैंड से तो लोग बहुत दुख साइलेंस है अंग्रेज लोग बहुत दुख दिला को लोग के फ्रेंच लोग लोग के स्क्लाव बना के काम करे लग फजी से शान ने काम करे तो लंसर बेचारा लोग और थोड़ा सुन पैसा मिला था इतना मेहनत करके मॉरिशस देश के आज इतना सुंदर बने ना हमने के पूर्वज हमने के बाप दादा लोग हमने के एंसेस्टर्स के हमने के पूर्वज के कबू नहीं छा भुलाई की तो एम जी आई कॉलेज में एगो मिजे बवा पड़ी तो खुद तो जाने कि तुहर तो पूर्वज तो कहाँ से आलबा तो अपन कह दे चिट्ठे पर नाक दिन सौंस वहाँ ले ले जाइए और वो मिजेवा में जाके देखिए कि तुहर तो फादर्स तुहर तो पूर्वज कहाँ से आ रहा इंटरेस्टिंग बात बाकी सकब जा जाने कि तो लोग के दादा के दादा के दादा कौन देश भारत की कौन जगह से आ रहे हैं उनके फोटो सब वहाँ पर ही तो लोग के पहली दादी पहला दादा के फोटो बा तो एक दिन जाए जाए जी आई कॉलेज वहाँ पर ही वो मिजे बा जाके पूछा मिजेवा में कि जो हमने के पूर्वज लोग कहाँ से आ रहे

ऐसे में चलो गीत सुना, दादा के कहानी सुना, दादी के कहानी। और गीत चरावती से खासम खास संगीता अमीरन के नाम है गीत। तोहर खातिर तोहर मामा तोहर भाई दान आजी बहन हिमा शांति वंशिका रक्षिता और तोहर सब परिवार के नाम है गीत। चरावती से रीता सीतालु की रसक और बेटा शैलेश बेटा शैलेन बहू रानी बहू रेशमा पोती अनुष्का और पोती परी। गीत तो लोग दादा के कहानी सुना दादी के कहानी।

एक से एक बढ़िया भोजपुरी की तो हर प्रोग्राम भोजपुरी तड़का में दिमाग की रात की और रंगीन बनावती सब के संगे संगे नाच गावा। और जब भोजपुरी भाषा की बात करी जा सकता है भोजपुरी भाषा के प्रचार प्रसार में एमबीसी हमेशा से नंबर वन रहल का टीवी से लेके रेडियो से लेके हमने हमेशा भोजपुरी भाषा के प्रोत्साहित कर रही सर कहे कि हमने के देश में ढेर कोई भाषा बोले रहा इस भाषा में बात करे रहन सा इस भाषा में दिखे रहन सा इस भाषा में कहानी दिखा ला कविता नाटक से भोला। हाँ आजकल थोड़ा नौजवान लोग उतना ध्यान नहीं दे हुए रहन सा पर हमने सब सब आपको वाजे करी हमने के जनजनों के हमने के जवानों के कि भोजपुरी जो भाषा है एक चेहरा हमने के आगे ले जाए के कहे कि वो भाषा के जब बोलबा तब भाषा जीवित रहे जब भाषा के नहीं बोलबा तब वही भाषा मर चला तो जानी ला सर ना तो भोजपुरी भाषा बोलिए नरसरमैया भाषा बताया कि हमनी के भाषा है तुलो के भाषा सब कोई की भाषा है और भोजपुरी जन भाषा है तो ऐसा जोड़ी से ओकर में थी मुहावरा भी बा एक्सप्रेशन सब रहे ओकर में कहानी तो जोड़ी जोड़ी कहानी बा भोजपुरी में का बोलबा भैया। और बेशक अगला गीत है पनिया बरसेला अविनाश लक्षण गीत वन और गीत हमनी चरावत ऐसा चाची ललिता कुशल अप्रहरण त्रियोले और चाचा आत्मा राम खातिर साथ में ये गीत चली सब हमने के भोजपुरी लवर्स के नाम जितना कोई भोजपुरी बोलेला भोजपुरी में लिखेला भोजपुरी में नाचीला सा गाविला सा झूमिला सा तो जितना कोई भोजपुरी पसंद करेला तो ये गीत तो लोग के नाम साथ में ये गीत वा चलावती सुरेश की रोसकर पत्नी खातिर रविराज है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी तोहर बेटा और सब बिछुक परिवार के नाम आप हवन लाल माटी से हमने के साथ दे होता बहुत बहुत धन्यवाद हमने के साथ दे खातिर बड़ी खुशी होता। और है कि तो हमने चलावते ऐसा तो लोग खातिर भी जो हमने के बहुत प्यार से सुनाता हुआ अपन रेडियो के अपन कान की भिरी डाल के सुनाता हुआ जा तो चला सुने पनिया बरसेला

हाँ तो अंदाजा लगा लेला कि पन्याबल से लग गीत वानी रहा, माफी चाहते हैं कि दूसरा गीत चल गल संगे संगे चल जाए, कोई बात नहीं। पर अब चली पन्याबल से ला, पर आजकल दिक्कत ऐसा पानी नहीं बरसता, और जहाँ तक कि आने वाला दिन में जो है पानी के जिसके विषय में कटौती हो सुनाल बा कहे कि हाई बारिश जो है तूफान नहीं आता, तूफान नहीं आया और पानियों नहीं बरसल। गर्मी के मौसम में अभी बार पानी बरस सके देसाम के महीना से लेके मौज के महीना ले, पर अचरज की बात है कि 2025 देसाम 2025 से जन 2026 से उतना पानी नहीं बरसल, वही खातिर हमने के जलाशय में पानी की मात्रा कम हो ही जाता, तो खजियावा में पानी कमती हो तो जिसके विषय में भी लिफे पड़ेगा। ये खातिर बोला तो जनता लोग के पानी गास्पी नहीं करिए, पानी सही इस्तेमाल करिए, पानी के पानी खुले नहीं छोड़ दिया। कबो ढेर कोई टेलीफोन में बताता पानी वो भी नहीं खुलल बा, पानी हराहर बहता। कबो शादी में ढेर कोई गीत गावत हम देखते हैं सब बाथरूम सिंगर बाप रे बाप हो जगह जो गीत गावत उन से एक घंटा ले होता उनसे नहा के तो सब पानी गास्पिए हो जाए, तो कहाँ से पानी है भैया। पानी जीवन है, जीवन पानी है, पानी से कुरों भी बने रहते, दुगो असर पड़ी। एगो पानी हमने की नहीं मिली पिए के और कुरों नहीं रहता कैसे अंधार में रह बचा। ये खातिर बोले थे सब पानी जाया नहीं करे के, पानी गास्पिए नहीं करे, उतना पानी नहीं बरसल बा जितना पानी चाह बरसे के। ये खातिर हमने के जाना सावधान रह के कहे कि जी एक पानी जो है पानी से सब काम होला, पानी से खाना बनेला, पानी से नितवायाज होला, पानी से कुआं बनेला, तो लोग समझदार हो सकता पानी गैस पिए नहीं करिए, सब पानी के सही उपयोग करिए जा। तो गीत वो चलिए अविनाश लक्षण के गावल पनिया बरसी, आशा का जैसे पनिया जरूर बरसी है। गीत हमने चलावते ऐसा खास हम खास नवीन लक्ष्मण जी के नाम रहे रोज बल का सब परिवार खातिर, जैतो एस एस एस कॉलेज के सब स्टूडेंट्स और अध्यापक के नाम, इमानुएल लॉन्गचिल एस एस एस कॉलेज जो मीबर्ग में बा वहाँ के अध्यापक वहाँ के रेक्टर स्टूडेंट्स के नाम, शास्त्री बनमाली है गीत और खातिर सुधीर जसवा गीत और माँ राजकुमारी चिबुक लॉन्ग राजा स्टीप नानो और प्रवीण भैरव है गीत और नाम, राज मन्ना की ओर से एक और सब परिवार के नाम, सावन और जिमी दुखिया है गीत के नाम और सब दुखिया परिवार के नाम। अविनाश लक्षण गावल गीत पन्या बरसेला।

आज का वर्ल्ड कप फीफा 2026 चलता 11 जून से शुरू हो गल बा और ये वर्ल्ड कप के जो नशा है सब कोई पर छाल बा छोटा से लेके बड़ा लेके सब कोई बोलता ए किले किप्पू गए दो कौन पे के जीत हो हाहा 11 जून से 19 जुलाई ले चलते रही अमेरिका कनाडा में सब हुआ था और 48 टीम 48 देश भाग गए थे कहाँ हो चुके थे और देश कर में भाग ले और फ्रांस बा कनाडा बा अंग्लैंड बा अमेरिक बा अब कौन पे के मिली तो बोले कि जीवसिल बा और आजकल मैगजीन सब बेचाता है वो मैगजीन है ना वर्ल्ड कप फीफा 2026 ओके में सब पे बा और पे के अनुसार ओके में फोटो बा जो है लोग के सब फोटो किन के कोले करे लेकिन लो खातिर वो फन है हमने जब कॉलेज जाता लिखा था गोलीब की नाता लिखा लिखा में वर्ल्ड कप फीफा लिखा था लोकल में और सब पे जैसे ऑस्ट्रेलिया सब पे जन जन पे भाग लग बाने की वर्ल्ड कप फीफा में तब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा इंग्लैंड ये सब तो आजकल दिखाते हैं सब कॉलेज में भी लड़का लोग पैसा रमासा था पर मैगजीन के नहीं खातिर और वर्ल्ड कप फीफा 2026 हाई का जोश है वो एकदम अलग है और ढेर कोई माइटी पर भी जाते हैं उनसा और एमबीसी पर भी

हाँ, आप चकबा एमबीसी आप डाउनलोड करिए और एमबीसी के काउंटर में यहाँ पर ही आई बजा तो थोड़ा बोलियन सा कैसे चहला तो एमबीसी आप थी करे के और कितना छा पे करे के ताकि तू सकबा एमबीसी आपके द्वारा इस

भोजवेतर का प्रोग्राम चला था तलो के रेडियो पर इनके रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर रात के 9 बजे से रात के 11 बजे रात है दिमास की रात 14 जून साल 2026 आज की रात तक गमटवा हो भी करी और जब हमने ऐसे तक खूब गमट होइला हो कि नहीं है और संगतिया लोग आजकल कोई आजकल अच्छा आज कोई कोई की बात नहीं सहल जाला सब कोई अपन अपन तरीका से जीला हो कि नहीं कोई की कौन चीज बोल बता मूवी हो जाए बा कोई की अच्छा भी बोल बता वो आदमी बुरा मान जला का जनी कहीं आज के इंसान नहीं समझेला आगे के जमाने में जब कोई कोनो काम करत हल निमन से नहीं होतल कम होत बोला तली से को सुझाव दियो तली से अब कोई की बोल बात आदमी बोलेला माइंड योर ओन बिजनेस मुंह पर बोल देवे ई खातिर आज कोई कोई की सलाह नहीं देवेला कहे कि सब कुछ चला लोग अच्छा से करेला पर इंसान से गलती होला सब इंसान से गलती होला ई खातिर हम मानीला अगर कोनो काम अच्छा से नहीं होलबा कोई हमने की समझावा था तो चाहेला उनके बात सुने के कहे कि नहीं सुनबा कमा बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाए हो कि नहीं तो ऐसे मैं बोल चला कि ऐसे ढेर थिएटर नहीं करे के कबू जब कोनो कौंसिल देवा था सुझाव देवा था तो सुझाव के अपने या और कमा जोड़ी से हो जाए और अगला गीत नाच हो गाव हो कमर व डोलाव हो हम है गीत अर्जुन है संजय हरिजन के गावल गीत है और है गीत चलावती सब बहुत बहुत प्यार के साथ है गीत चली अश्विन बच्चन जी के नाम रहेलन अभिया जी पर सुकर भाई कर सब बच्चन परिवार के नाम उदय धनी राम वैसे हवन कर पत्नी बेटा पतु बेटी दामाद किशन गुड़िया भगी तोहर खातिर भी बहुत बहुत प्यार के साथ प्रीतम राज जिमिला और सब जिमिला परिवार खातिर एक गीत चली और किशन गुड़िया बड़ा जोर नाचा था हमने के संगे संगे और फिर है गीत हमने चलावा थी सा वो सब संगतियारों के नाम जे कोई भोजपुरी गीत पर बड़ा जोर अभी नाचा था वनसा गावत वनसा झुमत वनसा कमरवा डुलावत वनसा और है गीत चली नाचे हो गावो हो कमरो डुलावो हो है गीत चलावते इस प्रशांत की ओर से कर बहन शिल्पा कर बुफ्रे कर माँ राधा और है गीत चली सबसी बालक परिवार के नाम चंपा और देविका रामगतिया लोगों को बड़ा जोर नाचता हमने के संगे संगे है गीत तो लोग खातिर और तो लोग के घरोला और लेकर लोग खातिर सब रामगतिया परिवार के नाम वंदना गुमानी गीत तोहर और से तोहर माँ और सब गुमानी परिवार के नाम राविश मंडो भी बड़ा जोर नाचता नाचा हो गावा हो कमरवा डुलावा हो चल एक साथ सब कोई नाचे

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
1: कमल, धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: Continuous music.

रात के 10 बज गए बा और एक घंटा बात लोग के साथ बिताई का देर भोजपुरी चर्चा कार्यक्रम और जी प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे ली और आजकल दिखिला से ढेर कोई फैशन फॉलो करे था अच्छा बात बा ढेर कोई अपन अंक जोली बारे खातिर कांटेक्ट डाले लेन सब के लॉन्ची बोला ला तो कांटेक्ट डाले से पहले को ऑप्टिशियन की सलाह ले लिया कि तो हर अंक के कौन नंबर दस्ती अच्छा रही अपन से कांटेक्ट किन के नहीं दलिया है गो डॉक्टर से गो डॉक्टर की सलाह से तो हर प्रकार के कांटेक्ट बा जैसे हनी नीला हरा ब्राउन आदि आदि जन आई कांटेक्ट है जन कांटेक्ट डाले से अंक में जोली देखी खातिर वो अंक सुंदर बनावे ला नीली नीली नजरिया हाँ तो लामोद है भाई काहे दुआने में डाले की का तो जैसे ढेर कोई बार में कोलोरों डाले ला कोई पियर्सिंग करे ला ढेर कोई मेहंदी डाले ला तो है जो न कांटेक्ट ये आँख में डाला ला दोनों डाले से पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों डाले लें से पर चेहरा एगो ऑप्टिशियन एगो डॉक्टर की सलाह पर कि तो हर आँख की कोनी में हो जस्ती थी अब दीपों की चलो के रंग कैसे बा अब दीपों हर तो कौन कुलिया के कांटेक्ट हुआ संग जगह सावला रंग के हुआ तो गो दूसर कुलिया के कांटेक्ट से भी कर बा अब गोरा रंग के हुआ तो गो दूसर कुलिया के हर प्रकार के कांटेक्ट रहेला तो आँख में कांटेक्ट डाले से पहले ऑप्टिशियन के देख लिया तब कांटेक्ट वाला डाल के नचिया नीली नीली नजरिया है कि तो चलावत इस निशान सिंह चुबा के नाम कर पत्नी बेटा बेटी तमाम सब चुबा परिवार के नाम उमा जगनायक तो रहना निस्कालिए है गीत कर बेटी दृष्टि और कर दामाद बहादुर और सब जगनायक और बहादुर परिवार के नाम नीली नीली नजरिया

रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चलता कार्यक्रम भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी के तड़का क्या बात है। और बेशक अभी रात के ढेर को हमने की सुना था बहुत बहुत प्यार से और रतन सर प्रताप जी प्रोग्राम तो एकदम चकाचक वह सब कहीं नाचे था। संगठन लोग हम मौके कल आज कल एक ढोल कहते रहता करता फजीर के ठंडा करेला दिन के गरम करेला और रात के ठंडा तो ठंडा गरम के जो मिश्रण है इसे आजकल ढेर कोई मलाद हुआ था सर्दी खांसी जुकाम तो जितना सकब पन पोते जे करिया त्रिको जाके तुकित पुल पासकोल ये सब दल रही कभी कभी तू घर से निकले ला घर तो जहाँ रहे ला वहाँ से केला थोड़ा गर्म करा तो ही पर जाइबा मौका बगल रेजवी बगल तहाई सैंपिया बगल तहाई सब ठंडा के था आप लोग आ गाँव भाई सब जगह में ठंडा करे रहा तो तू फजीर के घाम देख बत नहीं सोचा कि हाँ दिन की गर्म करी नहीं कभी कभी घामा एक कुछ बुझाला फोन हो जाला और ठंडा मौ से करे रहा। और अभी बुझा था मंगल से ग्वांटी साइक्लोन आई मॉरिशस के पास और है मंगल से काफ़ी ठंडा करी मंगल बूथ भी फेरे सकेला दो तीन डिग्री से तापमान में गिरावट आई तो ये खातिर ठंडा के मौसम सर्दी के मौसम अपन अपन संगे अपन जैकेट अपन त्रिको हमेशा ले रही है कुछ छत्ता ले रही है कहे कि कभी कभी एक पानी बरसे लगे रहा हों कि नहीं। और बेशक यहाँ पर यहीं से अमनी तुल के साथ देखा थे और अगला गीत खोज खोज के जोरी गीत है गीत भोजपुरी बॉयज कुणाल बाबूलाल गए थे वन बहुत बहुत प्यार के साथ और यही गीत हमने चलावा थे इस रंभा जी जो नहर स्विट्जरलैंड गीत तो कर खरुला को तीन को लेकर लो खातिर अजय और पूनम चिंताराम हवन जा ऑस्ट्रेलिया में अजय और पूनम उकर बेटा बाल गोपाल मॉरिशस में उकर बहन सलोनी फिर माँ इंदिरा चिंताराम और है गीत हमनी चलावत ईसा दीपा तिवारी दुखित के नाम माँ प्रहरन कनाडा में उकर पति केविन उकर बेटा और सब दुखित परिवार के नाम टीना बुदना रहन गाँव भी तीत तोहर खाति तोहर पति तोहर दुगो बेटी और सब बुदना परिवार के नाम भी और जितना कोई कभी रात की नींद नहीं लगता गीत थलो के नाम भी अरे भाई नींद नहीं लगता करवट बुला तो इधर या उधर कोई बात नहीं हमने हई सा थलो के संगे संगे रात के 11 बजे रही चले गीत सुने खोज खोज के

ओबेसिटी यानी कि मोटापा ये को बहुत बड़ा प्रॉब्लम बा दुनिया भर में और जब इंसान मोटा रहेला तो ढेर मना बीमारी ग्रसित कर रहा है जैसे कि टेंशन जाबेट कोलेस्ट्रॉल तो मोटापा से हमने के शरीर भी भारी हो जाला मोटापा कम करे खातिर रोज के चैना व्यायाम करे के एग्जरसाइज करे के नहीं बोले कि ले तो नहीं मिलेला एक दिन में 24 घंटा बा अक्षय कुमार खला को रिपोर्ट में बोले रहल को टीवी रिपोर्ट में कि सब कोई के बैंक खाता तो मिल रहा नहीं बोले कि एक घंटा थोड़ा नहीं मिला था एग्जरसाइज करे के चेहरा समय खोजे के एग्जरसाइज करिए कसरत व्यायाम करिए कमती खाइए और इक्विलिब्रियम खाइए ईट बैलेंस डाइट गा के चीज नहीं खाइए जैसे लाभियान रोज है चीनी नमक कमती खाए के है गोश ढेर नहीं खाए के जस्ती मच्छी सकबा खाए अगर नॉन वेज हो वेज हो तो अच्छा बा सब वेज सकबा खाए पर ये मोटापा से जरा दूर रहे के कहे कि आजकल दिखिला सर एगो ट्रेंड वाले का लोग खाली मोबाइल के आगे या टीवी के आगे बैठल रहे सर टक टक टक टक टक टक होला दिन भर तो एक बगल मोबाइल में चलता एक बगल चिप्स खाते वन से फास्ट फूड खाते वन से तो लेकिन लोग का हुई भैया ये खातिर बोली ला सर चहला एक हो व्यायाम कोनो न कोनो व्यायाम जो थोड़ा पसंद बजे से मॉर्निंग वॉक जॉगिंग साइकिलिंग नाताशन कोनो भी एग्जरसाइज चहला करके ये मोटापा से मुक्ति पाई खातिर और बेशक स्वास्थ्य बात सब कुछ बा हेल्थ इज वेल्थ अगर स्वास्थ्य नहीं बा भैया तो कौन से चीज के हाँ हाँ कि नहीं तो हमने कि काम हाथ लोग समझा कि आप तो लोग देखिया जाए अगला गीत जोली छोकरी से हम प्यार करीला कुणाल हिरीलाल गीत आ गई हवन और है गीत हमने चलावत इस प्रेम जी के नाम संगत या अशोक खातिर प्रेम और अशोक बेस्ट फ्रेंड्स हवन सा और ये बखत हमने के सुना था सत्यम सुबोल मे बग से गीत और खातिर सत्यम सुबोल गीत और खातिर तोहर पत्नी तोहर लेकर सब सुबोल परिवार के नाम वीना कुपुसामी है गीत और खातिर तोहर घरोला बेटी दामाद बेटा पतु और सुरमा दुखित है गीत और खातिर तोहर घरोला तोहर दुगो बेटी नबीहा और बेगो बेटी खातिर साथ में है गीत और चलावत तेईस विश्वानी बाबूलाल जुन रहे हैं लागोजा है गीत और नाम चले गीत और सुने कुणाल हिरीलाल की आवाज में मन करता नाचे की गावे की कमरवा डुलाए की गपट करके जलसा करके तामे संगे नाचा रात के 11 बजे रे

समझलो गजन आदमी थितर रहेला अनपर रहेला लोके समझाए के बड़ी मुश्किल रहेला तू कितना भी बात प्यार से लोके बोलबा पर लोग बिल्कुल नहीं समझे लंसर तई खातिर बोल जला कि दुनिया में सब कोई के चेहरा ज्ञान प्राप्त करे कि लिजकाशियों जन है बहुत जरूरी है जन ज्ञान है त पढ़ब लिखब त कुछ जनब अपन जिंदगी में अब जब पढ़ा लिखल नहीं रह तो कोई भी सकी थोड़ा क्यों नहीं कर दी पढ़ा लिखल रह तो कला मोहताज है कि कोई नहीं सकी थोड़ा क्यों नहीं करे रामों गैला को लेत मिला लेतवा सकब पढ़े एगो फॉर्म सकब भरे और पढ़ा लिखल हो कि ढेर लाभ होता है बा आगे के को जमाना रहा जहाँ पर माँ बाप लोग बहुत साल पहले की बात बोलते हैं 50-60 साल पहले ढेर माँ बाप लोग खाली छोकरा लोग के पढ़ावी पर धीरे धीरे जब स्वतंत्रता हो की देश के और सर शिव सागर राम गुलाम आइलन तब बोलक नहीं सब कोई के चेहरा पढ़ाई लिखाई की छोकरा छोकरी दोनों बराबर एगो जमाना रहा जब लड़का होता था छोकरा के बोलते हैं साफ को मैं लू सा या छोकरी दे जाए लो वो जमाना चल गए भैया आजकल छोकरा छोकरी दोनों फोमिया लो है और अपन निकालो के पढ़िया लिखिया कहे कि जैसे हम बोली कि पढ़ा लिखल नहीं रह तो बहुत मुश्किल बच जिए कि खासकर आज की दुनिया जहाँ पर टेक्नोलॉजी के बोलबाला बा ए आई के बोलबाला बा तो चेहरा पढ़ल लिखल रहे के ये खातिर हमने की सरकार ढेर मना रामोहताज देवेला सब कोई के पढ़े लिखे के हाँ कि नहीं तई रामोहताज के भरपूर तो फायदा उठाइया पढ़िया लिखिया बड़ा आदमी बनिया और ऐसा में वो गीत सुनब जा बहुत ही प्यारा सन गाना मीरा मोहन गैले वन मुर्गा मिया आहा हा बहुत ही प्यारा सन गाना है गीत हम नहीं चलावत इस सुमन जी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ आशा जानू हवन कहते से थैंक यू जी और भाई हरीश शुभबासे से आशा जानू और कर सब परिवार कर माँ कुमारी शुभम का दीदी आरती का जीजा जी और सब परिवार भाई हरीश बबासे से का सब संगतियालों के नाम है गीत चरावती से बहुत बहुत प्यार के साथ नोवेल फोन से हवन चाची प्रभावती गीत संगीता की ओर से चाची प्रभावती लोल खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और है गीत हमने चरावब जाऊ सब संगतियालों खातिर जन खुशी रहा मीरा मोहन की गीत सुने के आज मीरा मोहन हमने के बीच नहीं बा पर कर यादें हमने के साथ बहन के याद बा

मीरा मोहन जब एमबीसीआर आर संगे संगे काम करते सर, हम रली मीरा मोहन, फिर किशोर खिमिया भोजपुरी प्रोग्राम करते सर, बत्या तरी सर, तेगो संगत्या रहल मीरा मोहन हमर, हम के याद करी रहा भगवान का आत्मा के शांति दे। तो चले गीत सुनब जा, मुर्गा मियाँ, मुर्गा मियाँ का बोला था आज।

सगत लोग बोलता कैसे बुझाता हमने के कार्यक्रम आशा कर दीजिए कि तो लोग हमने के संगीत संगीत खूब गमत करते सर गीतन के मजा ले होत हो और इस रेशन गीत चलेला त बड़ी अच्छा लगेला अब जरा बात कर अब सर व्रत के बारे में व्रत धारण करला अच्छा बात है जो दिन हमने व्रत रखिला सर उस दिन बिसाई नहीं खाइला सर उस दिन वेजिटेरियन खाइला सर या फिर फल या कोनो मीठा खाइला सर तो व्रत रखना से कौन सी होला हमने के शरीर के शुद्धि होला और जो हमने के ऑर्गन बबीते में हमने के लिफ हमने के लिए के हमने के एंटिस्ट हैं तो जब व्रत रब और भजी से सान ले तो ये हमने के प्यूरिफी करेला मतलब हमने के शरीर के तो अच्छा है एगो है

रिलीजियस होकर सिग्निफिकेंस कि भगवान के याद करी रहस भगवान के नाम रही सब भगवान के जपी रहस तो एगो है रिलीजियस एगो है फिजिकल तो दोनों बराबर दोनों लामोताज है कि फिजिकल रूप से हमने के थोड़ा सुन हमने के शरीर में से जो टॉक्सिन है वो सब दूर हो लगा है कि ऐसे तो सब कुछ खाई रहस पर जब व्रत रही रहस जैसे एक बार दुर्गा पूजा होला तो नौ दिन ले या महाशिवरात्रि ले एक महीना ले कायम रही रहस तो ओकर एगो एगो एगो इम्पोर्टेंस है व्रत रखे के और कब व्रत रखते रखते देख बेर कोई विजेताओं हिल जला ई भी बा और बोली रहस कि विजेताओं जो है ओकर जे कोई विजेताओं बनेला ओकर ढेर लाभ बा लावताज बा और दिखा तू यूरोप में अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस ऑस्ट्रेलिया में बहुत से यूरोपियन लोग आजकल विजेताओं बनते बन सकते सबको क्या परंपरा पसंद है हम नहीं बोलते विजेताओं लेकिन ढेर कोई कुसा गोश मच्छी खाए कि ढेर कोई कुसा विजेताओं सबको क्या अपन अपन चॉइस बा पर बोले चाहते कि जब विजेताओं जब ढेर कोई हिलेला तो लोग बोले से ढेर मारा मोहताज बा ई लोग की मान्यता है अभी कहते सुनब जाएगा जोली गाना राधन राम साह और शर्मिला रघुनाथ के गावल गीत है गीत प्लेन मायों के डॉक्टर राकेश रामचंद की ओर से ओकर पत्नी आशा कुड्डू को बेटा और सब रामचंद परिवार के नाम जो नयन सब प्लेन मायों स्वीटी और स्विनी है गीत और खातिर मिस्टर चाटो है गीत और खातिर नतराज रामकोरन हवन ओकर भाई अरुण ओकर बहिन ओकर माँ बाप और सब रामकोरन परिवार के नाम रहे लंजा नूविल फ्रांस और ग्रेड सेवन रेड की हमारे सब स्टूडेंट्स के नाम जो जालन से सेंट ओबे एसएसएस कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के ये सब लोगों के नाम जो बीए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एमए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू और जो पीएचडी फ्रेंच में एनरोल हवन से हमने के सब लेक्चरर प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लोगों के नाम लुगारू

Sangatia log Shweta Babulal aur Kishore Kimia ke gawal geet O Balma ke sange Bhojpuri Charka program yahi par hi samapt hua tha kuch hi seconds mein kuch hi minute mein raat ki 11 baj jaye raat ke 9 baje se abhi liye humne ke saath dila ja bahut bahut dhanyawad log ke phone ko uska dil bahut shukriya theek 11 baje sun baje sunare pal karyakram aur raat ke 12 baje se kar phajir ke 6 baje le non stop filmi tarane humne ke to log ki mulaqat yahi tak raha और एक मुलाकात तक अजय प्रताप सिंह सितालू की इजाजत हमने की ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस हमने की तो लोग की मुलाकात होती रही रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर बाय बाय

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। स्वीकार कर लीजिए, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो बड़े प्यार से सारे म्यूजिक लवर्स का हम स्वागत करना चाहेंगे इन सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: दीवाना।
1: फिर कहो।
0: दीवाना।
1: फिर कहो।
2: कभी रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था बल्कि घर का एक हिस्सा था। आज भी वही एहसास लेकर हम आपके साथ हैं, लेकर आए हैं वो गीत, वो पीढ़ियों को जोड़ने वाला, ऐसे खूबसूरत नगमे जो चुन चुन कर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में, आपका सुनहरे पल। आप कहीं से भी अगर हमारा साथ दे रहे हो तो ये अगला नगमा सीधे हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस।
3: मेहमान है

एक गीत और हजार यादें, बस इसी खूबसूरत रिश्ते का नाम है सुनहरे पल। तो जल्दी से अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अगला नगमा जो

हम पेश करने वाले हैं वो सीधे आपके दिल को छू लेने वाले हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए ये अगला गाना हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस।

एक गीत और हजार यादें, बस इसी खूबसूरत रिश्ते का नाम है सुनहरे पल। तो जल्दी से अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अगला नगमा जो हम पेश करने वाले हैं वो सीधे आपके दिल को छू लेने वाले हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो चलिए ये अगला गाना हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस। आज का हर नगमा उन लोगों के नाम जो म्यूजिक को सिर्फ सुनते नहीं उसमें अपनी जिंदगी ढूंढते हैं, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये महफिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यू आर लिसनिंग टू रेडियो मॉरिशस और गिनिशा का साथ दे रहे हैं। कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो बस आराम से एंजॉय कर लीजिए ये अगला नगमा।

पुराने बॉलीवुड के गीतों में जो मिठास है ना दोस्त, वो हर जनरेशन को पसंद आ ही जाती है। तो चलिए इसी मिठास के साथ अपनी शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं। वैसे कभी किसी गीत ने आपको रुलाया है? सोचो, कभी किसी धुन ने आपको हंसाया है? आज के ये गीत आपके दिल के हर जज्बात को फिर से जिंदा

0: अफ्रीका।
1: आंखें जरा बंद कर लीजिए और इन गीतों के साथ अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पलों को याद कीजिए। शायद आज का कोई गीत आपको किसी अपने के और करीब लेकर आए, और हम दिल से उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए आपके लिए। तो चलिए जी, सुरों में खो जाइए और गुनगुनाइए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

पुरानी फिल्मों के गीत आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं दिल की सच्चाई बसी हुई है। आइए उन अनमोल नगमों का बस स्वागत करते हैं दिल से इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

से उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आपने दिल से एंजॉय किया और आपकी यादों को आपने याद करते करते बस मुस्कुराते रहे थ्रू आउट दी होल शो। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू। आप हमें प्यार से इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के शो में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।